प्रस्तुत है रामचरितमानस के बाल कांड का ये अंतिम प्रकरण, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए श्री राम के यश की कथा कही है।

0: Harap anda telah menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan sari acara esok hari ini. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kasan, dan saran kepada kami melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Saya ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम 1 की सफलता की सराहना की थी।
5: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस

0: सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
1: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
2: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान, सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्ले बुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे, अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
4: हम बहुत खुश है हमारे देश के लिए मेडल लाके, हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे।
1: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है

0: यह अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है। देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है। आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा। प्रत्यक्षित चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम-1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपने साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi hails India's growing private space ecosystem, meets Skyroot Aerospace founders after Vikram-1 success. Bihar and Assam governments to withdraw cases against NEET protesters and release those arrested under various charges. NDA parliamentary party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi today. Tourism Ministry signs MOU with Air India to promote India as preferred global tourism destination under Incredible India brand. India and China reaffirm importance of maintaining peace and tranquility along border. And India's para-athlete Sharmila Dhankar wins gold medal in women's shot put event at the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi interacted with Pavan Chandna and Naga Bharat Dhaka of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram-1 featured prominently in the discussion, along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about their journey and insights into their future plans. He said the energy, ambition and positivity reflect the vibrant spirit of India's private space ecosystem. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot Aerospace team. In his Mann Ki Baat program also, Prime Minister praised the success of Vikram-1.
3: पिछले रविवार विक्रम-1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
2: बिहार एंड असम गवर्नमेंट्स हैव डिसाइडेड टू विथड्रॉ केसेस एंड अदर लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट ओवर नीट एग्जामिनेशन। Bihar's Home Department assured that it will immediately initiate the legal process to withdraw all FIRs, criminal complaints and show cause notices against agitators registered before 6 p.m. on the 26th of July. We have more from a correspondent.
4: According to a public notice issued by the Home Department, no punitive, retaliatory or adverse legal action will be taken against any person who participated in the protest held anywhere in the state to 6 p.m. on 26 July. The legal process to withdraw all first information reports, complaints and show cause notices registered during this period

0: Obsession dies at 68, reports the Indian Express. And finally, The Odyssey nears $1 billion at global box office, reports Financial Express. Well, the paper says Christopher Nolan's The Odyssey is well on course to become another global box office blockbuster. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi hails India's growing private space ecosystem, meets Skyroot Aerospace founders after Vikram 1 success. Bihar and Assam governments to withdraw cases against NEET protesters and release those jailed under various charges. NDA Parliamentary Party to hold its weekly Mangal Milans meeting in New Delhi today. Tourism Ministry signs MOU with Air India to promote India as preferred global tourism destination under Incredible India brand. India and China reaffirm importance of maintaining peace and tranquility along border. And India's para-athlete Sharmila Dhankar wins gold medal in the women's shot put event at the Commonwealth Games. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे में भारत के फरोग पाते हुए प्राइवेट इकोनिज़ाम की सताइश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने विक्रम 1 की कामयाबी के तनाजुर में स्काईरूट एयरोस्पेस के बानी अहलकारों से मुलाकात की। बिहार और आसाम की सरकारों ने नीट मामले पर एहतजाज करने वाले अफराद के खिलाफ केस वापस लेने और मुख्तलिफ इल्जामात में गिरफ्तार किए गए अफराद को रिहा करने का ऐलान किया है। एनडीए पार्लियामानी पार्टी आज नई दिल्ली में अपनी हफ्तेवार मंगल मिलन मीटिंग का एहतमाम करेगी। सियाहत की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीही सियाहती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। भारत और चीन ने सरहद पर अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत का इरादा किया है। और दौलती मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने खवातीन के शॉर्ट पुट मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एयरोस्पेस के बानी पवन चंदाना और नाग भारत दाका के साथ गुफ्तगू की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि उनकी बातचीत में विक्रम 1 की कामयाबी नीज कई दिगर दिलचस्प मौजूदात पर खास तौर से तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस कंपनी के दोनों बानी अफराद के सफर और मुस्तकबिल के उनके मंसूबों के बारे में वाकफियत हासिल करने के बाद मसर्रत का इजहार किया। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी तवानाई, जोश और मुस्बत अंदाज़े फिक्र से भारत के खलाई शोबे के प्राइवेट इको निज़ाम के मुतहर्रिक जज्बे की अक्कासी होती है। जनाब मोदी ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम के तई नई ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात के अपने प्रोग्राम में भी विक्रम 1 की कामयाबी की सताइश की थी।
3: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
2: बिहार सरकार ने उन अफराद के खिलाफ केस और दीगर कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है जिन्होंने नीट यूजी इम्तिहान में मुबैना बेजाब्तगियों के मामले पर एहतजाज में हिस्सा लिया था। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
4: बिहार के महकमे दाखिला की तरफ से जारी किए गए एक पब्लिक नोटिस के मुताबिक 26 जुलाई को शाम 6 बजे से कबल रियासत में कहीं भी एहतजाज में हिस्सा लेने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ कोई ताजीरी, इंतकामी या नामुवाफिक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस मुद्दत तक दर्ज कराई गई सभी FIR फौजदारी शिकायतों और वजह बताओ नोटिस वापस लेने के लिए कानूनी अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। सरकारी बयान के मुताबिक वक्त की मजकूरा हद से कबल दाखिल किए गए केसों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए अफराद को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा। सरकार ने ये यकीन दहानी भी कराई है कि इस मुद्दत से पहले के वाकयात के सिलसिले में

0: मुस्तकबिल में कोई बराह रास्त या बिलवास्ता कार्रवाई नहीं की जाएगी। पटना से सविता पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: आसाम के उमूर दाखिला और सियासी उमूर के महकमे ने भी कहा है कि नीट यूजी इम्तिहान का पर्चा मुबैना तौर पर लीक होने के मामले पर एहतजाज के सिलसिले में रियासत में केस दर्ज किए गए थे और 13 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। अलबत्ता रियासती सरकार ने यह फैसला किया है कि इन मुजाहिरों में शामिल होने वाले अफराद के खिलाफ रियासत के अंदर पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की कोई नामुवाफिक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लियामानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तेवार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है, जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंट इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है, जिसका मकसद NDA के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। इस महीने की 21 तारीख को गुज़श्ता मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पूरे मुल्क में आइंदा होने वाले इंतखाबात में पेपर लीक होने के वाकयात की रोकथाम के लिए सभी मुतल्लिका इदारों की जानिब से मरबूत कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के हालिया वाकये में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के तई सरकार के अहद को दोहराया था। इधर तृणमूल कांग्रेस से अलहदा होने वाले ग्रुप के अरकान पार्लियामेंट नई तश्कील दी गई नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI को भी NDA की मीटिंग में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। सियाहत की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीही सियाहती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सियाहत और सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में नई दिल्ली में इस समझौते पर दस्तखत किए गए। इस इश्तराक का मकसद आलमी सतह पर भारत की सियाहती झलक को उजागर करने के लिए वजारत के इकदाम के साथ साथ एयर इंडिया के वसी अंदरून मुल्क और बैनुल अक्वामी नेटवर्क को बरूए कार लाना है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब शेखावत ने कहा कि इस साझेदारी से अहमियत की हामिल बैनुल अक्वामी मार्केट्स में भारत की मौजूदगी को मुस्तहकम बनाने के लिए भारत की मुतनव्वे सियाहती सलाहियत उजागर हो सकेगी। सरकार ने खिलौनों के शोबे को तकवीत पहुंचाने और खिलौनों की आलमी मार्केट में 2032 तक भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने में मुआवनत के लिए एक टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान किया है। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में सनत और दाखिली तिजारत के फरोग के महकमे के जेर एहतमाम खिलौनों के शोबे के बारे में एक मीटिंग से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। कॉमर्स और सनतों की वजारत ने कहा है कि ये टास्क फोर्स आलमी वैल्यू चेन के साथ मुल्क की खिलौनों की सनत को मरबूत करने, मैन्युफैक्चरिंग सलाहियत को मुस्तहकम बनाने और कारोबार करने में सहूलत पैदा करने पर तवज्जो मरकूज करेगी। इस मौके पर जनाब पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की खिलौनों की सनत की तरक्की से विकसित भारत के मकसद की समत मुल्क की पेशरफ्त की अक्कासी होती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने बीजिंग में चीन के नायब वजीर खारजा हुआ चुनयांग से मुलाकात की और बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया। जनाब मिसरी ने इस नजरिए को आगे बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी तबादले ख्याल किया कि भारत और चीन साझेदार हैं और तिजारती और इकतसादी राबतों में बाहमी तौर पर मुफीद नतीजों के जरिए एक दूसरे के लिए मौके दस्तियाब करा सकते हैं। चीन में भारतीय सफारतखाने के मुताबिक दोनों अहदेदारों ने भारत चीन सरहदी इलाकों में अमनो इस्तेकाम बरकरार रखने की अहमियत को तस्लीम किया। इससे कबल जनाब मिसरी ने बीजिंग में चीन की पीपल्स सियासी सलाहकार कॉन्फ्रेंस की 14वीं कौमी कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल होंग लियांग के साथ अपनी मीटिंग के दौरान सियासी और अवाम से अवाम के राबतों की सतह पर भारत और चीन के दरमियान बाहमी तबादलों को वसत देने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। इस मीटिंग में चीन में भारत के सफीर विक्रम दुराय स्वामी भी मौजूद थे। उत्तराखंड में मौसमियात के महकमे ने आज रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर वार्निंग जारी की है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि रियासत में कई मकामात पर कल रात से लगातार बारिश होने की वजह से सड़क रास्ता बंद हो गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: उत्तराखंड में देहरादून और कई दीगर हिस्सों में कल रात से लगातार बारिश हो रही है। देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में सभी स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज आज बंद हैं। लगातार बारिश होने से पहाड़ी खित्तों में दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो गया है। देही इलाकों में तकरीबन 50 सड़कों का रास्ता बंद है और बहाली का काम जारी है। अलबत्ता चार धाम यात्रा का रास्ता फिलहाल खुला है और इंतजामिया सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। मौसमियात महकमे के मुताबिक रियासत में अगले चंद रोज तक मानसून के सरगर्म रहने का इम्कान है। बेशतर इलाकों में हल्की से लेकर औसत बारिश होने जबकि कई मकामात पर तेज बारिश होने की भी पेशगोई की है। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बनी नौए इंसान की बहबूद फितरत को महफूज रखने और इसका ख्याल रखने में पिनहा है। एक संस्कृत श्लोक शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क की रिवायत भी सभी को इंसाफ के रास्ते पर चलने की तरगीब देती है। वजीर खारजा डॉ एस जय शंकर ने आज पेरू के यौम आजादी के मौके पर वहां की हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत पेरू के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद है। वजारत खारजा ने एक तजारती जहाज MV ओमोरफी पर हमले के बाद कल भारत में यूक्रेन के सफीर डॉ ओलेक्जेंडर पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय शहरी हलाक हो गया। इस वाकये पर उन्हें अपनी शदीद तशवीश से आगाह करते हुए वजारत ने तजारती जहाजों पर इस तरह के हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो में 9.81 मीटर की सीजन की बेहतरीन कारकर्दगी के साथ खवातीन शॉर्ट पुटर F57 मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इस कामयाबी के साथ ही शर्मिला दौलत मुश्तरका खेलों में सोने का तमगा हासिल करने वाली पहली पैरा एथलीट बन गई हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दौलत मुश्तरका खेलों के दौरान शर्मिला धनखड़ के सोने का तमगा जीतने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की तरफ से पैरा एथलीट्स में पहली बार सोने का तमगा हासिल करके शर्मिला ने तारीखी कामयाबी हासिल की है। नौजवानों के उम्र और खेलों के मरकजी वजीर डॉ मनसुख मांडविया ने शर्मिला धनखड़ को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनके जज्बे ने आलमी सतह पर पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया है। स्कॉटस्टोन स्टेडियम में भारतीय हाई जंपर सर्वेश कुशारे ने भी मर्दों के हाई जंप मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। सदर जमहूरिया ने मर्दों के हाई जंप मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल करने पर सर्वेश कुशारे को भी मुबारकबाद पेश की है। खेलों के मरकजी वजीर डॉ मनसुख मांडविया ने सर्वेश को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उनकी शानदार कारकर्दगी ने पूरे मुल्क का नाम रोशन किया है। इसके अलावा वेटलिफ्टर वलूरिया अजय बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव ने चांदी का एक एक तमगा जीता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मर्दों के वेटलिफ्टिंग में 79 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा हासिल करने पर वलूरी अजय बाबू के तय नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। खवातीन के शॉर्टपुट F57 मुकाबले में कांसे का तमगा जीतने पर शिल्पा के शैला को मुबारकबाद पेश करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि उनका अज्म और मुसलसल कोशिश करते रहने का जज्बा सभी को तरगीब देता है। मर्दों की 16वीं हॉकी जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2026 आज सुबह तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर में शुरू हो रही है। इस टूर्नामेंट में मुल्क की मर्दों की बेहतरीन हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी जो 12 दिन यानी 8 अगस्त तक मुकाबला करेंगे जिसमें कौमी चैंपियन का फैसला होगा। टूर्नामेंट का इफ्तिताह डिवीजन सी के पूल ए मैच में आसाम और मिजोरम के दरमियान मुकाबले से होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
0: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इंकलाब की 6 सुर्खी है, पेपर लीक के खिलाफ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश। अखबार प्रताप लिखता है, इंजीनियरिंग मसनूआत की बरामदात में 21% इजाफा, 5 गुना से ज्यादा की छलांग। अखबार ने तजारती जहाज पर हमले में एक भारतीय मल्लाह की मौत के वाकये पर एहतजाज दर्ज कराने के लिए यूक्रेन के सफीर को तलब किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारात ने वजीर आला रेखा गुप्ता के हाथों त्यागराज स्टेडियम में 22वीं दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप का इफ्तिताह किए जाने की खबर को भी नुमाया किया है। اخبار انقلاب نے ایران کے رہبر اعلی مجتبی خامنائی کے اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ امن معاہدہ لبنان پر اسرائیلی حملوں کے خاتمے سے مشروط. اخبارات کی دیگر اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہے. گرفتاری کے وارنٹ کے باوجود

0: नेतन्याहू अमरीका रवाना।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खलाई शोबे में भारत के फरोग पाते हुए प्राइवेट इको निज़ाम की सताइश की है। वज़ीर आज़म ने विक्रम वन की कामयाबी के तनाजुर में स्काईरूट एयरोस्पेस के बानी अहलकारों से मुलाकात की। बिहार और आसाम की सरकारों ने नीट मामले पर एहतजाज करने वाले अफराद के खिलाफ केस वापस लेने और मुख्तलिफ इल्जामात में गिरफ्तार किए गए अफराद को रिहा करने का ऐलान किया है। एनडीए पार्लियामानी पार्टी आज नई दिल्ली में अपनी हफ्तेवार मंगल मिलन मीटिंग का एहतमाम करेगी। सियाहत की वजारत ने इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के तहत आलमी सतह पर भारत को तरजीही सियाहती मुल्क के तौर पर फरोग देने की खातिर एयर इंडिया के साथ मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। भारत और चीन ने सरहद पर अमनो इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत का इरादा किया है और दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने खवातीन के शॉटपुट मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुना रहे हैं फतेह अली का सितार वादन। ये पेश कर रहे हैं राग नट भैरव। इनके साथ तबले पर संगत की है मोहम्मद अकरम ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप सुन रहे थे फतेह अली का सितार पर बजाया राग नट भैरव। इनके साथ तबले पर संगत की थी मोहम्मद अकरम ने। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।
1: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है।
2: आज के अंक में मैं संकल्प मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं।
3: 18 जुलाई 2026 को भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हैदराबाद स्थित निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने आधुनिक विक्रम 1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। मिशन आगमन के तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12 बजे उड़ान भरने वाले इस रॉकेट ने पेलोड्रस को सफलतापूर्वक 450 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। इस ऐतिहासिक लॉन्च के साथ भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास ऑर्बिटल क्षमता वाले रॉकेट लॉन्च करने वाली अपनी खुद की निजी कंपनी मौजूद है। 17 जुलाई 2026 को भारत ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन नमो ग्रीन रेल की शुरुआत की। हरियाणा के जींद से सोनीपत रूट पर रवाना की गई ये स्वदेशी ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है क्योंकि ये पारंपरिक डीजल के बजाय हाइड्रोजन से चलती है और इसके इंजन से धुएं की जगह केवल जल वाष्प यानी वाटर वेपर निकलता है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज मिशन के तहत शुरू की गई इस तकनीक से भारत अब जर्मनी और चीन जैसे चुनिंदा देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है जो देश के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगा। अब चलते हैं चीन की ओर। 17 जुलाई से शंघाई में आयोजित वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2026 में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहां 400 से अधिक ह्यूमनॉइड यानी इंसानों जैसे रोबोट एक साथ प्रदर्शित किए गए। कोई लोगों का स्वागत कर रहा था, कोई सामान उठा रहा था तो कोई बातचीत कर रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ऐसे रोबोट अस्पतालों, कारखानों, घरों और बुजुर्गों की देखभाल जैसे कई क्षेत्रों में हमारी मदद कर सकते हैं। 14 जुलाई 2026 को भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन कजाकिस्तान से बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से रूसी सोयुज M29 अंतरिक्ष यान के जरिए सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए। पेशे से आपातकालीन चिकित्सक डॉक्टर मेनन का ये पहला अंतरिक्ष मिशन है जिसके तहत वे करीब 8 महीनों तक ISS पर रहकर अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में चिकित्सा तकनीकों और वैज्ञानिक प्रयोगों पर शोध करेंगे। उनकी ये ऐतिहासिक उपलब्धि दुनिया भर के उन करोड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। 15 जुलाई 2026 को भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक बड़ी तकनीकी क्रांति हुई जहां घरेलू स्टार्टअप वेमेग लैब्स ने देश की पहली वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर का सफल अनावरण किया। इस अत्याधुनिक मोटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिना किसी महंगे रेयर अर्थ मैग्नेट दुर्लभ पृथ्वी चुंबकीय तत्वों के काम करती है जिससे विदेशों पर निर्भरता खत्म होती है। इसके बजाय ये स्वदेशी तकनीकी जैसे तांबे की कुंडलियां, कॉपर कॉइल जिसे हम कहते हैं, और एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है जो चुंबकीय प्रभाव को पैदा करता है जिससे EV उत्पादन लागत में भारी कमी आएगी। चलिए अब सीधे रुख करते हैं गहरे और अनसुलझे ब्रह्मांड की ओर। 21 जुलाई 2026 को खगोलविदों ने एक ऐसी खोज की है जिससे पता चला है कि अंतरिक्ष में एक विशाल जुपिटर यानी बृहस्पति के द्रव्यमान जितने बड़े ऑब्जेक्ट की खोज हुई है जिसे एक एक्सोसैटेलाइट या अनोखा चांद कहा जा रहा है। ये खोज ब्रह्मांड में ग्रहों, चंद्रमाओं और हमारी पुरानी परिभाषाओं को चुनौती दे रही है। 21 जुलाई 2026

0: को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व खोज करते हुए एक मामूली सिलिकॉन चिप को डीएनए राइटिंग मशीन में बदल दिया। ये आधुनिक चिप पानी और बिजली की मदद से एक साथ कई जटिल डीएनए सीक्वेंस लिख सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक से भविष्य में डेटा स्टोरेज की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी, जहां कंप्यूटर का डेटा किसी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क के बजाय सुरक्षित जैविक डीएनए में स्टोर किया जा सकेगा। वहीं 22 जुलाई 2026 को सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के डॉक्टर रॉबर्ट नोबल और उनकी टीम ने कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए इवोल्यूशनरी थ्योरी और मैथमेटिकल मॉडलिंग पर आधारित एक नई रणनीति विकसित की है, जिसमें एडिटिव थेरेपी का उपयोग कर ट्यूमर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ये नई पद्धति पारंपरिक उपचार के विपरीत कैंसर कोशिकाओं में दवा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदलकर ट्यूमर को लाचार बना देती है, जिससे प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती ट्रायल में ही बेहद सकारात्मक परिणाम इनके सामने आए हैं। डॉक्टर नोबल की टीम ने यह साबित किया है कि अगर ट्यूमर को संभालने का मौका दिए बिना सही समय पर यानी थेरेपी के खिलाफ रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदल दिया जाए तो कैंसर कोशिकाएं पूरी तरह लाचार हो जाती हैं और हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं।
1: दोस्तों 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है और भारत की बात करें तो बाघों के संरक्षण और उनकी बढ़ती संख्या में भारत सबसे अग्रणी देश है। लेकिन बाघों का संरक्षण इतना महत्वपूर्ण है क्यों और विश्व बाघ दिवस की कहानी क्या है, आइए जानते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला से।
2: बाघ एक ग्लोबल स्पीसीज है, इनफैक्ट इसको सबसे ज्यादा आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के रूप में भी सामने आया है। जिस एरिया में बाघ पाए जाते थे उसमें बहुत कमी आई। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ग्लोबल टाइगर समिट सेंट पीटर्सबर्ग जगह है वहां पर आयोजित की गई 2010 में। जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था उसमें ये लिया गया कि हमको अगले 12 सालों में बाघों की संख्या को डबल करने और साथ में एक और चीज डिसाइड की गई कि 29 जुलाई को हर साल ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य ये था कि इस दिन हम जो इसके बारे में अवेयरनेस जो जनरल पब्लिक है उनको बताया जाए। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो उसमें भारत का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जहां तक कि बाघों के संरक्षण की बात, यानी ऐसे टाइगर जो कि जंगलों में पाए जाते हैं उनकी अगर संख्या देखें तो उसका करीब 70% भाग जो है वो भारत में पाया जाता है। तो भारत उन गिने चुने देशों में से एक है, उसने अपने जो टाइगर नंबर थे जो कि हमारे 2006 में 1411 हो गए थे उनको डबल कर लिया। आज हमारे पास करीब 3,500 से 4,000 तक बाघ विचरित करते हुए पाए जाते हैं। इसमें से भी जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो अपने आप में सिरमौर है बाघ संरक्षण। इस साल हम इसके 90 साल पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान के, और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई इसमें 9 टाइगर रिजर्व्स को शामिल किया गया। आज 58 टाइगर रिजर्व्स ऐसे हैं पूरे देश में जो कि इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। इसका शुरुआत थी वो भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से ही हुई, तो इसीलिए कॉर्बेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाघों की संख्या की बात करें तो आज कॉर्बेट में सबसे ज्यादा बाघ हैं, 260 से लेकर 270 बाघ आज यहां पर है।
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में तकनीक का बाघों के संरक्षण में क्या योगदान है, इसके बारे में डॉक्टर साकेत कहते हैं।
2: आज अगर हम देखें तो तकनीक का उपयोग जो है वो बाघ संरक्षण या वन्यजीव संरक्षण के लगभग हर पहलू में किया जा रहा है। प्रोटेक्शन की बात करें सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्षेत्र में जो हमारी गश्त सुनिश्चित करना। इसके लिए हमने भारत सरकार ने और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और जो NTCA है जो कि पूरे देश में बाघ संरक्षण को देखता है, उन्होंने एक M-Stripe ऐप बनाया है। अगर हमारे कर्मचारियों ने कहीं पे उनको कोई भी घटना दिखती है वो M-Stripe ऐप में एंटर कर सकते। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो इसका रोल है, हम स्पेशल कैमरा ट्रैप लगाते हैं जिनमें की फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली जब बाघ उनके सामने से गुजरता है उसकी फोटोग्राफ कैप्चर कर ली जाती है। और हमें पता है कि जो बाघों की जो धारियां होती हैं जिनको हम स्ट्राइप पैटर्न कहते हैं वो हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह होती है, यानी हर बाघ की जो धारी का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होगा, यूनिक होगा। जब हमारे पास पूरे क्षेत्र से स्वचालित जो कैमरा ट्रैप है उनसे फोटोग्राफ प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा टेक्नोलॉजी का प्रयोग आता है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए, कि जैसे हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ऐसी बाउंड्री जहां पर गांव से लगती है आबादी वाले क्षेत्र से लगती है वहां पर हमने बहुत पावरफुल कैमराज लगाए हुए या वहां पर ऐसे हमारे सेंसर्स लगे हैं जो कि जब जानवर बाहर जाता है तो उसकी जानकारी हमको मिल जाती है। साथ में अगर मैं पूरे क्षेत्र पर निगाह रखने की बात करूं तो हमको ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसका भी भरपूर प्रयोग किया जा रहा है।
1: दोस्तों भारत में हाल फिलहाल में ही वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स का आविष्कार हुआ है और इस आविष्कार ने एक बार फिर से रेयर अर्थ मटेरियल्स को चर्चा में ला दिया है। IIT कानपुर में इसी क्षेत्र में पोस्ट डॉक कर रहे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण समझाते हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल्स आखिर है क्या और ये इतने खास क्यों हैं।
3: रेयर अर्थ मतलब दुर्लभ धातु है जो कि हम धरती पे बहुत कम पाए जाते हैं। कम इस सेंस में है कि ये हैं धरती में बहुत सारे बट इनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। 15 से 20 धातु ऐसे हैं जो

0: कैटेगरी में आते हैं। और ये स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि इनके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। ये मैग्नेटिक होते हैं जनरली, और इनका परमानेंट मैग्नेट के तौर पे बहुत इस्तेमाल होता है। तो आजकल जितने भी ड्रोन्स देखते हैं या रोबोट्स देखते हैं, उसमें मोटर्स का बहुत फंडामेंटल यूज है। जहां भी मूवमेंट है तो मोटर से कंट्रोल होता है। तो मोटर जो चलता है वो बस मैग्नेट के बेसिस पे चलता है। तो आपका जितना अच्छा मैग्नेट होगा उतना बढ़िया एनर्जी कन्वर्जन होगा। तो उच्च क्वालिटी के जो मैग्नेट होते हैं वो इन रेयर अर्थ मटेरियल से बनता है।
1: आजकल मोटरों में इस्तेमाल होने वाली चुंबक यानी मैग्नेट्स का रेयर अर्थ खनिजों से क्या संबंध है? इस बारे में डॉक्टर नवनीत कहते हैं।
0: परमानेंट मैग्नेट जनरली फेरोमैग्नेटिक होते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में उस मैग्नेटिक मटेरियल को डालेंगे जो परमानेंट मैग्नेट है, तो उनका एक हिस्टेरिसिस लूप बनता है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव, जीरो से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से निगेटिव, फिर निगेटिव से वापस जीरो लाएंगे, तो एक हिस्टेरिसिस लूप बनता है उनके मैग्नेटाइजेशन का, कि उनमें कितना मैग्नेटिक इंड्यूस हो रहा है। तो उसके अंदर एक एरिया बनता है, वो एरिया जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एरिया जितना बड़ा होगा, जितना ब्रॉड होगा, तो वो एनर्जी उतना एफिशिएंटली कन्वर्ट करने का, यूज करने का मैग्नेट बनता है। परमानेंट मैग्नेट्स अकेले परमानेंट रेयर अर्थ एलिमेंट से नहीं बनते हैं। उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कुछ एक जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं उन्हें, उनके मिश्रण के साथ बनाए जाते हैं। जैसे एनडी एफई बी बोरोन करके एक परमानेंट मैग्नेट है, बहुत फेमस कॉमन मैग्नेट है। तो एनडी जो है इसमें वो रेयर अर्थ एलिमेंट है। तो इस तरह से जो एनर्जी एफिशियंसी है वो एनडी की वजह से काफी ज्यादा होती है। परमानेंट मैग्नेट आप आयरन से भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी एफिशियंसी उतनी ज्यादा अधिक नहीं होगी, बजाय की जब हम एनडी और एफई को मिला के बना। तो इस तरह से हमारे पास जो रेयर अर्थ वाले हैं वो एनर्जी एफिशिएंटली काम करते हैं। इनका एक और एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, जो हमारे हवाई जहाज के वो होते हैं ना मटेरियल जिनसे बनाया जाता है, तो उनके एलॉय में भी ये रेयर अर्थ वाले यूज होते हैं। स्कैंडियम और ये ट्रियम करके दो हैं रेयर अर्थ, उनके यूजेस होते हैं। तो वो एल्यूमिनियम के साथ एक ऐसा एलॉय बनाते हैं जो काफी मजबूत होते हैं।
1: डॉक्टर नवनीत बताते हैं कि आखिर रेयर अर्थ मटेरियल्स इतने रेयर क्यों होते हैं?
0: रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली मतलब रिएक्टिव होते हैं काफी। कुछ एक हैं बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, और मोस्टली जो है वो काफी रिएक्टिव होते हैं। तो वो किसी न किसी फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो, जैसे आयरन आपको मिल जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपली, जितना आसानी से उतनी आसानी से आप रेयर अर्थ को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उन कंपाउंड में फॉर्म होते हैं। तो उनको एक्सट्रैक्ट करना केमिकली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो प्रोसेस अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है उनको एक्सट्रैक्ट करना। तो इस तरह से वो थोड़े डिफिकल्ट है, और साथ में उनकी अबंडेंस है लेकिन वो बहुत स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मतलब एक होता है ना कि आपके पास एक कोई खनिज है तो एक जगह काफी इकट्ठे हैं, तो वहां से आप कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसमें आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगा। अमाउंट है उनका ठीक ठाक लेकिन स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनको फिर एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास ज्यादा बड़ा अमाउंट है उसमें से आपको थोड़ा कम अमाउंट का पदार्थ निकालना है, तो इस वजह से भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंडिया में ऐसा है, एक मोनाजाइट करके खनिज है जो कि आप केरल का बीच है, वो कोंकण वाला बीच जो है उसके अराउंड पाया जाता है, बहुत सारे खनिज हैं उसमें। फिर इंडिया में देखें तो गुजरात के साइड भी है।
1: भारत में हालिया वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स के आविष्कार से बदले हुए समीकरणों पर डॉक्टर नवनीत कहते हैं।
0: तो भविष्य में ये है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। अगर हम टेक्नोलॉजिकली देखें तो जो मोटर डिस्कवर हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, और ये एक तरीके से सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस सा दे रहा है। क्योंकि जो आज दुनिया में पूरे ग्लोबल लेवल पे रेयर अर्थ का जो सप्लाई है वो चाइना के पास है, तो वो इन चीजों को बहुत अच्छे से ग्लोबली कंट्रोल करता है। तो अगर हम इस संदर्भ में देखें इंडिया की डिस्कवरी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि आप एक सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट मोटर बना रहे हैं, जहां पे इस मटेरियल की बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आप इससे इंडिपेंडेंस ले रहे हैं।
1: दोस्तों, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आप रीतिका बिंजोला से सुनते हैं जुलाई माह के प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं के बारे में।
2: जुलाई का ये महीना सिर्फ मॉनसून की फुहारें लेकर नहीं आता, बल्कि ये महीना गवाह है इतिहास के उन महान वैज्ञानिकों के जन्म का जिन्होंने अपनी सोच से पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। शुरुआत करते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने अंधेरी दुनिया को रोशनी से भर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 10 जुलाई 1856 को जन्मे महान आविष्कारक निकोला टेस्ला। आज हमारे घरों, स्कूलों, अस्पतालों और कारखानों तक जो बिजली पहुँचती है वो मुख्य रूप से इसी प्रणाली के कारण संभव हो पाती है। अगर केवल पुरानी डीसी प्रणाली होती तो बिजली को इतनी दूर तक पहुंचना बहुत कठिन पड़ता और महंगा होता। टेस्ला ने इंडक्शन मोटर भी बनाई, जो आज पंखों, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर और उद्योगों की कई मशीनों में इस्तेमाल होती है। वायरलेस संचार और रेडियो से जुड़े उनके विचार भी अपने समय से बहुत आगे थे। अब बात करते हैं ग्रिगोर मेंडल की, जिनका जन्म 20 जुलाई 1822 को हुआ था। उन्होंने मटर के पौधों पर लगभग 8 वर्षों तक प्रयोग किए। इन प्रयोगों से उन्होंने बताया कि माता पिता के गुण बच्चों तक कैसे पहुंचते हैं। आज इसे हम अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल की खोज की बदौलत आज वैज्ञानिक नई और अधिक उपज देने वाली फसलें विकसित कर रहे हैं, कई अनुवांशिक बीमारियों का अध्ययन कर रहे हैं, और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी लगातार आगे बढ़ रही है। इसीलिए उन्हें अनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं 25 जुलाई 1900

0: बात रोजरलैंड की रिसर्च से ही शुरू हुई थी। तंबाकू व पोलियो जैसे वायरस के सटीक आकार को खोजने में भी रोजरलैंड ने क्रांतिकारी योगदान दिया, जिससे आगे चलकर वैक्सीन और दवाइयां बनाने में मदद मिली।
1: श्रोताओ, इसी के साथ आज के अंक को मुझे यानी संकल्प मिश्रा को संपन्न करने की अब दीजिए अनुमति। अगले अंक में विज्ञान जगत की नई हलचल के साथ एक बार फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ को 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सर्वेश कुशारे, वल्लूरी अजय

0: बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव को रजत पदक जीतने तथा शिल्पा शायला और बिंदिया रानी देवी को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कनाडा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 जीतने पर अनाहत सिंह की भी सराहना की। अध्यक्ष ने देश का नाम रोशन करने वाले सभी एथलीटों के साथ साथ कोच और उनके परिवार के सदस्यों को भी बधाई दी। बाद में श्री बिरला के प्रश्नकाल शुरू करने के प्रयास पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्ष ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया ताकि सार्थक संवाद हो।
1: आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा होती है।
0: राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। दिन में 11 बजे सदन के शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने विधेयक सदन के पटल पर रखे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन के शून्यकाल शुरू करने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हैं। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। गठबंधन की पूर्ण एकता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से संसद सत्र के दौरान ये बैठकें पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती हैं। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि हब एंड स्पोक मॉडल से वर्ष 2030 तक लगभग 4 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। श्री नायडू ने कहा कि सेवा के शुरू होने से अमृतसर से यात्री अब दिल्ली के रास्ते दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक और पेरिस सहित लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेंगे। नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने हब एंड स्पोक उड़ान सेवा का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिन्हा ने कहा कि मॉडल भारत के विमानन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। मध्य प्रदेश के भोपाल में नवविकसित निषादपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम इसका उद्घाटन करेंगे। मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव भी अब निषादपुरा रेलवे स्टेशन पर होगा। आंध्र प्रदेश के चेल्लूरू में कल देर रात एक सड़क दुर्घटना में 8 वर्षीय बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। चेल्लूरू के पास रुके हुए वाहन पर विशाखापट्टनम से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 63 अंक बढ़कर 76,899 जबकि निफ्टी 24 अंक बढ़कर 24,020 पर कारोबार कर रहा था। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: घर आंगन। दोस्तों, कहते हैं मौसम कुदरत का आईना है जो हर पल अपना रंग बदलता है। कभी धूप की गर्मी और कभी बारिश की ठंडक, कभी सर्द हवा का एहसास। और मौसम सिर्फ बाहर से नहीं बदलता बल्कि हमारे मन और सेहत पर भी असर डालता है। इसीलिए हर मौसम का स्वागत कीजिए और हम भी आपका स्वागत करते हैं। तो आज के कार्यक्रम घर आंगन के इस प्यारे से शो में मैं हूँ आपकी दोस्त रहो सिमरन कौर,
1: और स्वीकार कीजिए रश्मि कुकरेती का प्यार भरा नमस्कार।
0: और मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। और आप हमें सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर।
1: जी, और सिमरन काली घटाएं छा गई हैं और बारिश बरस रही है, जगह जगह बारिश हो रही है और मन भी खिल उठा है। लेकिन हम तो ये कहेंगे जहाँ भी हो संतुलित बारिश हो, और बारिश के मौसम में कुछ छोटी छोटी सावधानियां बहुत काम आती हैं। और वही जो है हमारा सवाल है आज हमारे श्रोताओं से कि बारिश के मौसम में आप कौन कौन सी सावधानियां बरतते हैं छोटी छोटी सी। तो ये इस सवाल का जवाब हमें लिख भेजिए fmgoldga@gmail.com पर, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत, फिल्म थी प्यासा सावन और आवाज थी सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की।
1: जी। और जहाँ एक और बारिश हो रही है, मेघ गरज बरस रहे हैं, तो आज का दिन है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस सिमरन। और ये दिन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति केवल हमारी आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारे जो अस्तित्व है उसका आधार है। जो पेड़ है, नदियां, पहाड़, जंगल, पशु पक्षी और स्वच्छ हवा, ये सभी मिलकर ही तो हमारी धरती को जीवन प्रदान करते हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा रश्मि जी आपने। और लेकिन बढ़ते प्रदूषण, जंगलों की कटाई, प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण पर्यावरण की गंभीर नुकसान हो रहा है।
1: और देखिए, जो ये आज का दिन है ना, इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि लोगों को समझाना कि अगर हम प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो भाई आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कैसे सुरक्षित रहेंगी, स्वच्छ
0: बिल्कुल
1: वातावरण कैसे मिल पाएगा।
0: बिल्कुल सही कहा। और हम अक्सर सोचते हैं कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या बड़ी संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये सच भी है कि छोटे,
1: जिम्मेदारी है,
0: बिल्कुल,
1: हमें लगता है ऐसा।
0: और लेकिन ये सच भी है कि छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
1: जैसे हम मिलकर एक पेड़ लगा सकते हैं, या घर में अपने पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं, प्लास्टिक का कम उपयोग कर सकते हैं, और जब आप कमरे से निकले तो भाई बिजली का जो बटन है वो बंद कर दें, और बिजली की बचत करें, और अपने आसपास भी स्वच्छता बनाए रखें।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो वास्तव में हम अपने भविष्य की रक्षा कर रहे होते हैं। प्रकृति हमें बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ देती है, और हम अब हमारी बारी है कि हम उसे कुछ लौटाएं।
1: तो क्यों ना हम एक संकल्प लें आज के दिन कि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे और इस धरती को हरा भरा रखने में अपना योगदान करेंगे। याद रखिए, प्रकृति बचेगी तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा।
0: बिल्कुल सही।

0: अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौंडवाल और भूपेंद्र सिंह की आवाज में गीत, फिल्म थी नजदीकियां। और
1: सिमरन हमें ये मेल आ चुकी है जो हमने सवाल पूछे थे। मधु किरण जी दिल्ली से कह रही हैं कि मैं तो अपने घर के आसपास और छत पर पानी खट्टा नहीं होने देती, बाजार से कटे हुए फल नहीं खरीदती और मच्छरों से बचने के लिए उचित साधनों का भी प्रयोग करती हूँ, लेकिन भाई बरसात में नहाने से जो आनंद आता है ना, भाई वो तो मैं बता ही नहीं सकती। और फोड़े फुंसी भी नहीं होते, त्वचा के जो रोग हैं उनसे भी निजात मिलती है। और एक और मेल हमारे पास आया है
0: कौन सा है?
1: जी, जो हमेशा सबसे पहले मेल
0: सब
1: करते हैं, नवीन
0: वही मैं
1: भाटिया
0: सोच रही
1: जी।
0: थी, आज रश्मि जी ने पहले वो वाला पढ़ दिया और नवीन भाटिया जी का रह गया। चलिए आप पढ़
1: मोती
0: दीजिए।
1: नगर नई दिल्ली से कह रहे हैं कि मैं बाहर का खाना पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं हम लोग, और मजबूरी में अगर बाहर जाना पड़े तो अम्ब्रेला, रेनकोट और अपनी स्कूटी की डिग्गी में भी हम रख लेते हैं। तो भाई जैसा कि कहा कि बाहर का खाना अगर आप खाते हैं ना, तो
0: बिल्कुल।
1: रहता है कि बीमार पड़ने का थोड़ा डर रहता है बारिश
0: कितना
1: के मौसम
0: मौसम
1: में।
0: है, तो इस मौसम में तो सावधानी बहुत ही अच्छी है कि ऐसा ही
1: जी
0: होनी
1: बिल्कुल,
0: चाहिए।
1: क्योंकि लिवर को प्रभावित करता है, अगर उसमें कोई भी देर से कटा हुआ, रखा हुआ, ढका हुआ ना हो। और लिवर से जुड़ी हुई जो बीमारी है हेपेटाइटिस, आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है, तो
0: बिल्कुल
1: उसके
0: सही,
1: बारे में आप कुछ बताना चाह रही थी।
0: बिल्कुल। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग लिवर यानी यकृत को प्रभावित करती है, और ये वायरस के संक्रमण, दूषित भोजन और पानी, असुरक्षित रक्त चढ़ाने और संक्रमित सुई के उपयोग और असंतुलित जीवन शैली के कारण हो सकती है।
1: जी, और भाई ये जो बीमारी है इसके प्रति जागरूकता पैदा करना और इसके बचाव के उपयोगों की जानकारी देना बहुत जरूरी है। इसके लक्षणों के बारे में हम थोड़ा समझ लें कि आरंभिक जो लक्षण है, थकान महसूस होना, भूख कम लगना, बुखार, उल्टी, पेट में दर्द, आंखों या त्वचा का पीला पड़ना, ये सारे हेपेटाइटिस के
0: और रश्मि
1: लक्षण हैं।
0: जी, ये तो अच्छी बात है कि हेपेटाइटिस से बचाव संभव है, इसीलिए हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि स्वच्छ भोजन, पानी का सेवन करें, केवल सुरक्षित और नई सुई का उपयोग सुनिश्चित करें, और रक्त चढ़ाने से पहले उसकी जांच की पुष्टि जरूर कर लें और डॉक्टर की सलाह से टीकाकरण अवश्य करवाएं।
1: जी बिल्कुल, और जो इस विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर आइए हम संकल्प लेते हैं कि अपने लिवर का ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और समय समय पर जांच भी कराएंगे और हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता फैलाने में अपना योगदान देंगे, तो तभी तो हम बरसात के मौसम का आनंद ले सकते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: सही।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी स्वामी। और रश्मि जी, एक मेरे पास मेल आया है सुनैना गुप्ता का मेरठ से।
1: जी
0: इन्होंने ये लिखा है कि बारिश के मौसम में सबसे अच्छी सावधानी, अगर आप भीग जाएं, बाहर से आए तुरंत गीले कपड़े बदल दें, क्योंकि ठंड लग जाएगी और बुखार आ जाता है। इससे अच्छा है लौंग तुलसी अदरक वाली चाय जरूर पिए। तो
1: जी
0: हम
1: और
0: सबसे पहले यही काम करते हैं।
1: सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति अगर और जुड़ गए हैं सोनीपत से और कह रहे हैं कि बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए, घर का ताजा।

0: लक्ष्मी जी अब बात कुछ करें, कुछ खास
1: जी
0: मजेदार बात
1: जरूर।
0: करें। बात करते हैं मैट्रिमोनियल साइट पर ध्यान देने योग्य बातों की।
1: भाई वाह, मतलब सीधे बारिश से आप विवाह की ओर मुड़ गई हैं।
0: अब विवाह, क्योंकि आज के दौर में रिश्ते ढूंढने का तरीका काफी बदल गया है
1: जी।
0: पहले जहां परिवार रिश्तेदारों के माध्यम से रिश्ते तय होते थे, वहीं अब मैट्रिमोनियल वेबसाइट और ऐसा भी लोगों की पहली पसंद बन गया है। क्या
1: जी
0: करें?
1: लेकिन भाई ये तो ठीक है कि भाई ये देखना पड़ता है, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स का जब आप उपयोग करें ना, तो कुछ बातों का ख्याल अवश्य रखें। सबसे पहली बात तो ये है कि उस प्रोफाइल की सच्चाई को जांचें। किसी भी व्यक्ति की प्रोफाइल को देखकर तुरंत विश्वास ना करें। उसकी शिक्षा और नौकरी और पारिवारिक जानकारी उसको अच्छी तरह से समझें, और जहां तक संभव हो जानकारी की पुष्टि भी करें।
0: और इसके अलावा दूसरी बात ये कि अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखें, और शुरुआत में अपना घर का पता, बैंक डिटेल्स, पासवर्ड और अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें। ऑनलाइन सुरक्षा हमेशा आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए
1: जी। और अगर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की जरूरत पड़े तो फिर ऐसा ना करें, कुछ बातचीत जरूर करें, एक दूसरे को समय दें, और वीडियो कॉल या व्यक्तिगत मुलाकात से पहले थोड़े सावधानी बरतें। पहली मुलाकात हमेशा किसी सार्वजनिक स्थल पर करें, या परिवार या करीबी लोगों को इसकी जानकारी अवश्य दें।
0: और इसके अलावा अगर वीडियो कॉल का व्यक्तिगत मुलाकात से पहले की बात जो आपने की वो भी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो कॉल में भी ये ठीक नहीं रहता कि हम एक दूसरे के साथ जब
1: सावधानी हमें रखनी
0: चाहिए,
1: जी
0: हमेशा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसी भी आर्थिक लेन देन से बचें। यदि कोई व्यक्ति किसी भी कारण से पैसों की मांग करता है तो एकदम होशियार हो जाएं, और धोखाधड़ी का संकेत ये हो सकता है।
1: देखिए अब समय बदल रहा है दोस्तों, तो मैट्रिमोनियल साइट्स अच्छे रिश्ते ढूंढने का एक बेहतरीन माध्यम हो सकती है, लेकिन समझदारी और सावधानी के साथ। तो जो एक सही रिश्ता जो है वो विश्वास से बनता है, सम्मान से बनता है, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो पारदर्शिता पर आधारित रहता है। तो सकारात्मक विचारों के साथ अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले सोच समझ कर लीजिए और सुरक्षित रहिए।
0: बिल्कुल।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत, फिल्म थी वक्त की दीवार और गाया था आशा भोसले और किशोर कुमार ने। रश्मि जी, एक मेल आया है।
1: जी बोल बताएं।
0: ये आया है चंद्र विहार से, रीना गुप्ता, नीना गुप्ता और रितिन गुप्ता का।
1: जी
0: इन्होंने लिखा है कि बारिश के मौसम में खास तौर पर इस घर का निरीक्षण जरूर करते रहें, क्योंकि कहीं से अगर पानी टपक रहा हो तो तुरंत उसे रोकने की व्यवस्था करें और घर के आसपास नजर बनाए रखें कि कहीं पानी रुका हुआ तो नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी का खतरा है।
1: जी बिल्कुल, सावधान रहना चाहिए और घर में हम रह रहे हैं तो उसकी देखभाल करना भी जरूरी है। एक और मेल मेरे पास आया है, आप हैं राघव दिलशाद गार्डन से, आप कह रहे हैं कि जब भी बारिश का समय हो तो फिर ऐसे समय पे बिजली भी कड़कती है, तो बिजली कड़कने के समय पेड़ और बिजली के खंभे से दूर रहें और खुले मैदान से में रहें, और घर में जो बिजली के तार और प्लग हैं वो स्विच वो गीले हाथों से ना छुए, तो ये भी सावधानी जरूरी
0: बहुत,
1: है।
0: बहुत
1: अगर
0: बड़ी
1: पानी
0: सावधानी है।
1: अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और पानी भरा हुआ है तो ध्यान रखें कि थोड़े बिजली खंभों से बच कर रहे,
0: क्योंकि
1: बहुत अच्छी जानकारी।
0: बिल्कुल, और इस समय रश्मि जी क्या होता है कि गीले हम हाथ तो लगा देते हैं जल्दी जल्दी स्विच पर, एकदम देखते भी नहीं है कि घर में आए और दरवाजा खोला और लगा दिया, तो उससे फिर वो वही दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा, है ना।
1: और ऐसा भी होता है सिमरन कि जब बारिश का समय होता है तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना होता है कि सीलन वगैरह ना हो, जैसा कि आपने बताया, तो अगर सीलन का ध्यान रखना है और हम चाहते हैं कि घर में खुशबू बनी रहे तो
0: मुझे
1: एक
0: वही
1: जड़ी
0: चीज
1: बूटी
0: याद आ
1: ऐसी
0: रही
1: है जो बहुत काम की है,
0: बिल्कुल
1: जड़ी
0: सही
1: बूटी
0: कहा,
1: तो नहीं है बल्कि अच्छी खासी पेड़ होता है,
0: पेड़ होता
1: और
0: है
1: वो है चंदन का पेड़।
0: सुंदर, क्योंकि ये सच है कि ये रोग मुक्त और त्वचा के लिए प्रसाधनों में

0: जो है वो यूज होता है चंदन, है
1: जी
0: ना,
1: इस्तेमाल
0: मतलब
1: होता
0: इस्तेमाल
1: है।
0: होता है, और खास तौर पर कपूर, नींबू, खीरा, गुलाब और पुदीना, पुदीना का जो निचोड़ होता है वो भी इसमें यूज होता है, जो हमारे हम जो जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्रीम, पाउडर, कुछ कई चीजें इस्तेमाल करते हैं सौंदर्य प्रसाधन की, तो
1: आप
0: उसमें
1: कहना
0: भी
1: चाह
0: होता है
1: रही हैं,
0: वो
1: आप कहना चाह रही
0: चंदन की तरह,
1: हैं,
0: चंदन की तरह,
1: जी,
0: जी हाँ।
1: आप कहना चाह रही हैं कि अगर हम रोग मुक्त त्वचा अगर चाहते हैं तो चंदन के साथ ये सब चीजों का भी इस्तेमाल होता है। और इसमें अगर हम चंदन की बात करें तो इसमें सिर्फ औषधीय गुण ही नहीं होते बल्कि ये प्रत्यक्ष रूप से त्वचा को प्रभावित करते हैं और दर्द में भी आरामदायक होते हैं। और अगर सौंदर्य प्रसाधन को ले लीजिए तो ये सारी जड़ी बूटियां तो इस्तेमाल होती ही हैं।
0: और अगर हम बात करें चंदन की, तो भारत में लोकप्रिय चंदन का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, इसकी लकड़ी, इसका पाउडर, इसका लोशन, तीनों ही तरह से काम में लाया जा सकता है।
1: जी, और त्वचा के लिए तो ये बहुत लाभकारी होता है भाई। भारत में जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि चंदन से सौंदर्य और त्वचा दोनों की रक्षा होती है, जलन और खरोंचों को भी दूर करता है और त्वचा को कम उम्र दिखाने में चमत्कारी प्रभाव देता है।
0: और ये सभी तरह की त्वचा के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि हल्का लोशन होता है, इसीलिए रूखेपन को दूर करके चेहरे की चमक लाता है, और चंदन युक्त क्रीम त्वचा को प्रदूषण, सूर्य की तेज धूप से भी बचाती है।
1: जी, और सिमरन अगर आपके पास चंदन की लकड़ी का छोटा सा भी टुकड़ा है और उसको अगर आप रगड़ लें और उसका जो लेप है माथे पर लगा लें तो विश्वास कीजिए ये गर्मी के मौसम में ठंडक भी देता है, खुशबू भी देता है और आपके मन मस्तिष्क को बिल्कुल तरोताजा कर देता है, तो रूखेपन को भी दूर करता है। और चंदन युक्त जो क्रीम होती है वो तेज धूप से जैसे बचने के लिए आजकल कहते हैं ना सनस्क्रीन, तो जो उसका लेप होता है एक तरह से सनस्क्रीन का भी काम करता है। और चंदन का तेल कई प्रसाधनों में इस्तेमाल किया जाता है और इसकी भीनी भीनी जो खुशबू है भाई वाह, उसके तो क्या कहने। तो चाहे बारिश का मौसम हो या गर्मी का, हर मौसम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: तो क्या कहते हैं, चंदन एक रूपनिक।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज में गीत, फिल्म थी आंगन की कली।
1: जी, और कितना खूबसूरत बोलते हैं
0: और
1: सिमरन भाई, सुख के लिए पड़े दुख भी सहना, है ना। तो भाई अगर आपको सुख चाहिए जिंदगी में तो ये तो एक पहिया है, एक दुख आता है उसके बाद सुख आता है, और
0: बिल्कुल
1: यही आप शायद, मुझे लग रहा है, अगली
0: बात
1: बात
0: ही कर रहे
1: बताने
0: हैं,
1: वाली
0: बिल्कुल
1: है।
0: बात ही कुछ
1: लेकिन
0: ऐसी
1: इस
0: कर रहे
1: बात
0: हैं।
1: से पहले हम कुछ मेल शामिल कर लेते हैं जो हमारे पास आए हैं, आप कहें तो शामिल करें।
0: बिल्कुल करिए।
1: जी, इदरीस सैफी जुड़ गए हैं हमारे साथ। वो कह रहे हैं भी, रोड पर अगर पानी भरा हो तो और रास्ता अनजान हो तो वहां पर गाड़ी ना चलाएं भाई, ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अनवर साबरी कह रहे हैं, लेकिन अनवर साबरी जी ने अब कोई वो लिखा नहीं है, संदेश नहीं लिखा, सिर्फ नाम लिखकर भेज दिया है। और कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह और शाहजहां बेगम कह रहे हैं कि आपकी आवाज जो है प्रीति मोहन जी से मिलती जुलती है। रश्मि जी, आपकी आवाज,
0: वो बहुत
1: और
0: अच्छी, ये तो बहुत
1: जी
0: तारीफ
1: इसके
0: किया है मैंने
1: अलावा
0: अभी
1: हमारे पास
0: रश्मि
1: एक
0: जी
1: और
0: की।
1: संदेश आ गया है। आप हैं विवेक विहार से हमारे साथ जुड़े हैं सुभाष जी। वो कह रहे हैं कि जब आप बारिश में वाहन चलाएं और बाहर निकले तो ध्यान रखें, क्योंकि तेज बारिश में जो दिखाई देना कम हो जाता है, तो वाहन धीमी गति से चलाएं। और साथ ही वे लिखते हैं कि अगर आप दोपहिया वाहन पर हैं तो हेलमेट जरूर पहने, और साथ में जो रेन गियर रखें, माने आप कुछ बरसाती वगैरह साथ लेकर चलें, और पानी में वाहन बंद हो जाए तो उसे बार बार स्टार्ट करने की कोशिश ना करें भाई, ये मेरे लिए भी जानकारी है। और अंडर पास और निचले इलाकों में और तेज बहाव वाले रास्तों से वो कह रहे हैं बचें, ये भी बहुत जरूरी है भाई। अंडर पास में जो है पानी भरने का डर रहता है, वहां सावधान रहें, और सड़क पर चलते समय खुले मेन होल और टूटे फुटपाथ से सावधान रहें। हमारे श्रोता कितने जानकार हैं, जागरूक हैं, और क्यों ना हो भाई, FM
0: बिल्कुल
1: गोल्ड से जुड़े हैं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के श्रोता हैं, ये तो वाकई बहुत जागरूक और सावधान हैं, और हम भी उनसे बहुत कुछ रोज सीखते हैं।
0: मैं भी ये कहने वाली थी, इसीलिए परेशानी में सांस को बनाए रखे, परेशान
1: जी
0: ना होइए क्योंकि जीवन
1: तो
0: एक यात्रा है, इसमें सुख दुख दोनों आते हैं, कभी खुशियों की धूप होती है, कभी कठिनाइयों के बादल छा जाते हैं, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि परेशानी के समय हमें अपना साहस नहीं खोना चाहिए।
1: जी, अभी जैसे ट्रैफिक की ही बात हो रही थी, तो अंधेरी रात के बाद जैसा आपने कहा कि नया सवेरा आता है, और हर परेशानी कोई ना कोई सीख सिखा कर जाती है। कई बार ऐसा होता है सिमरन कि हम परेशानी में ना घबरा जाते हैं, हार मान लेते हैं, और हम अपने अंदर जो छिपी शक्ति है उसको पहचान नहीं पाते।
0: बिल्कुल सही।
1: भाई जिन लोगों ने मुश्किल समय में धैर्य और साहस बनाए रखा, वही आगे चलकर सफलता की मिसाल भी बने।
0: देखिए, चाहे बीमारियों, आर्थिक समस्या और रिश्तों

0: तनाव हो या फिर किसी प्रियजन का बिछड़ना, हर चुनौती का सामना हिम्मत और सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए
1: जी। और हमें ये याद रखना चाहिए कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका परिवार है, मित्र है, आपके अपने हैं, ये सब आपको मानसिक शक्ति देते हैं। और साथ में अच्छी बातें पढ़ें, संगीत सुनें, प्रार्थना करें और अपने मन की बात अपने विश्वसनीय व्यक्ति से या किसी दोस्त के साथ जरूर साझा करें।
0: और साहस का अर्थ है डर और कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ते रहना। छोटी छोटी कोशिशें भी हमें बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाल सकती हैं।
1: तो सिमरन, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें विश्वास रखना चाहिए प्रभु पर कि ये समय भी गुजर जाएगा और अपने मन में उम्मीद की एक लौ जो है वो हमेशा जगा कर रखनी चाहिए।

0: और रश्मि जी, चलते चलते एक मेल और पढ़ दूँ।
1: जी
0: ये
1: जरूर।
0: आया है रानी शर्मा का, और इन्होंने लिखा है कि हर मौसम अपने साथ कुछ परेशानी तो लेकर आते हैं, लेकिन इस मौसम में कमरे के बाहर पैर पहुंचने के लिए पायदान जरूर रखें, और खिड़कियों और दरवाजों के पर्दे और कालीन का उपयोग ना ही करें तो अच्छा है।
1: जी बिल्कुल। और एक और संदेश हमारे पास आया है, वो कह रहे हैं आप हैं तिलक नगर से उदयन, आप कह रहे हैं अभी बारिश में सावधानी बरतनी जरूरी है, पहले तो छाते का ध्यान रखिए, और सड़क पर अगर पानी दिखे तो धीरे चलिए, क्योंकि पता नहीं नीचे सड़क है या गड्ढा है भाई, और मच्छरों से बचकर रहना वो कह रहे हैं जरूरी है, क्योंकि भाई अब घर घर घूमने का सीजन आ गया, क्योंकि इस समय भाई ध्यान रखना जरूरी है, अगर पार्क में बच्चों के साथ जाएं तो जरूर कुछ ना कुछ मच्छर जो बचाने की जो क्रीम है बच्चों पर जरूर लगा लें, क्योंकि इस समय डेंगू और चिकनगुनिया का भी मौसम आ गया है, हम आप बता दें सभी सुनने वालों को। तो सिमरन आगे क्या कहना चाह रही हैं?
0: आगे बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि समय जो देख रही हूँ घड़ी का, वो होने वाला है
1: जी,
0: समाप्त।
1: तो अनुमति लेते हैं अपने सभी सुनने वालों से।
0: तो यूं ही सुनते रहिए, और इसी वादे के साथ रश्मि जी और मुझे यानी सिमरन कौर को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

0: पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने सभी की सुरक्षा की भी कामना की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी जेएएसी द्वारा आयोजित मार्च के दौरान 20 लोगों के मारे जाने और कई अन्य के घायल होने की खबर है। खबरों के अनुसार कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। जेएएसी ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है और आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और अत्यधिक बल का प्रयोग किया। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. following opposition uproar over alleged police action during a student protest over the NEET issue. When the Lok Sabha began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated Indian athletes who won medals at the Commonwealth Games, including para-athlete Sharmila Dhankar on winning the gold. He also applauded Anahat Singh on winning the World Junior Squash Championship. Later, when Mr. Birla tried to take up the question hour, the opposition members started sloganeering over the alleged police action against students during the protest. The Speaker said the House should function smoothly, engage in meaningful dialogue and deliberate on the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill.
2: I appeal that no matter how much deadlock there may be or how big the issue is, I request the honourable members that there should be no disruption during question hour. A positive message should go out across the entire country that discussions and dialogue take place in the parliament.
1: As the uproar continued, this

0: Speaker adjourned the House till 2 p.m. The Rajya Sabha was also adjourned till 2 p.m. over the same issue. When the House assembled at 11 a.m., several union ministers laid the papers on the table of the House. The report of the department-related Parliamentary Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution was also presented. The government has approved the Reserve Bank of India RBI's proposal to introduce polymer banknotes in the denominations of 10 and 20 rupees. In a written reply in the Lok Sabha, Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary informed that RBI had sent a proposal to the government for the introduction of 1 billion pieces each of 10 and 20 rupees polymer banknotes for field trials. He said regular issuance of polymer banknotes in these two denominations will be done after successful completion of field trials. The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting known as Mangal Milan was held today at Parliament House. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and other leaders were present at the meeting. MPs from Trinmool's Breakaway faction, the newly formed Nationalist Citizens Party of India NCPI, also attended the alliance meeting. In Assam, the flood situation has shown further improvement, with the number of affected districts coming down to 6. According to the latest official report, Shivasagar, Golaghat, Charaideo, Jorhat, Nagaon and Kamrup metropolitan districts continue to be affected by the deluge. Rescue and restoration work is underway. Prime Minister Narendra Modi today met members of parliament from Assam and discussed the prevailing flood situation in various parts of the state. Sharing the information through a social media post, the Prime Minister said the centre is working closely with the Assam government in assisting those affected. He also prayed for everyone's safety and well-being. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Chhattisgarh and Odisha for the day. An orange colour warning for very heavy rainfall has been issued for Delhi, Haryana, Chandigarh, Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Uttar Pradesh till tomorrow. Heavy rainfall conditions will continue over parts of northeast India, Bihar, Chhattisgarh, Karnataka, Konkan, Goa, Gujarat, West Bengal and Vidarbh during the next 2 days. At least 20 people were killed and several others injured during a long march organized by the Joint Awami Action Committee, JAAC, in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In a social media post, JAAC said the long march caravans had reached Ravalkot. The march was organized after talks between JAAC and the Pakistani authorities reportedly failed to reach a mutually acceptable outcome. India's para-athlete Sharmila Dhankar won the gold medal in the women's shot put event at the Commonwealth Games in Glasgow last night. With this achievement, Sharmila also became India's first ever Commonwealth Games para-athletics gold medalist. Her triumph ended India's 20-year wait for a para-athletics medal at the Games. Indian high jumper Sarvesh Kosari also clinched a silver medal in the men's high jump event at the Scotstoun Stadium. Benchmark domestic equity indices were trading with marginal gains in the afternoon session today. The Sensex added 79 points to 76,915 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: Meter, अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. आप हमारे प्रसारण डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं. साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन एआईआर लाइव न्यूज 24x7 पर भी. श्रोताओं, दोपहर के 1:10 हुए हैं और ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से का. आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत गीतों से सजी फिल्म की थोड़ी सी कहानी और जानकारी, साथ में उसके वो खूबसूरत गीत जो आज भी लोकप्रिय हैं और लोगों की जबान पर हैं. सुनेंगे और चर्चा करेंगे इस फिल्म के बारे में, लेकिन उससे पहले एक संदेश.
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए.
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस समझ गया।
3: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: जी हाँ श्रोताओं, जानकार बनिए, सतर्क रहिए, ताकि आप जो डिजिटल लाभ आप ले पा रहे हैं, हम ले पा रहे हैं बदलते हुए दौर में, इस बदलती हुई प्रौद्योगिकी का जो फायदा हम घर बैठे उठा पा रहे हैं, उसका हमें नुकसान या खामियाजा ना उठाना पड़े। और अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं सिलसिला। श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का एक ही फिल्म से कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम, जैसा कि बता रहे हैं, कि आरजू फिल्म की बात करने वाले हैं। आरजू फिल्म 1965 में आई थी, और इस फिल्म में अगर हम मुख्य भूमिकाओं की बात करें तो राजेंद्र कुमार, साधना, फिरोज खान रहे, और अन्य साथी कलाकार जो जिनकी बहुत अहम भूमिका रही पूरी पटकथा में, उनमें शामिल हैं महमूद, नाजिमा, नज़ीर हुसैन, अचला सचदेव और धूमल। राजेंद्र कुमार, जो गोपाल और सूरज की भूमिका, दो नाम थे उनके, उसमें थे। उषा की भूमिका में थी साधना, और फिरोज खान रमेश की भूमिका में। हाउस बोट मालिक, जिसे महमूद के नाम से आपने देखा होगा, महमूद आप जानते ही हैं, सरला की भूमिका में नाजिमा थी, और दीवान किशन किशोर की भूमिका में थे नज़ीर हुसैन। गोपाल की मां बनी थी अचला सचदेव, और धूमल ने मुंशी अशादौला लाल की भूमिका अदा की थी। इस फिल्म में, 1965 की इस फिल्म में जो पटकथा थी और गीत थे, वो सभी को पसंद आए। रामानंद सागर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राजेंद्र, जैसा कि मैंने कहा कि राजेंद्र कुमार और साधना, फिरोज खान जैसे सितारों ने अपने अभिनय से एक ऐसी कहानी रची जिसमें श्रोताओं प्यार था, इंतजार था, और हालात से जूझता हुआ दिल भी था। शंकर जयकिशन का मधुर संगीत और हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के सधे हुए बोल, इन सब ने एक साथ मिलकर आरजू को एक यादगार एहसास बना दिया। अगर हम गायकों की बात करें तो मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और आशा भोसले, साथ में एक गाना जो काफ़ी पसंद किया जाता है, उसमें तमाम साथी कलाकारों की आवाज़ें सुनाई पड़ेंगी, जो आपको इस कार्यक्रम के सबसे अंत में उस गीत को हम सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो कार्यक्रम का पहला गाना है वो है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी गीत के साथ, जिसमें प्यार की नाजुक शरारत और रूठने मनाने की प्यारी सी अदा झलकती है।

क्या खूब बात है इस गीत की, हल्की सी नोकझोंक, थोड़ी सी मासूम जिद और दिल से निकली सच्ची मोहब्बत। यही तो उस दौर के गीतों की पहचान हुआ करती थी। आरजू की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां दो दिल मिलते हैं मगर किस्मत उन्हें बार बार परखती है। राजेंद्र कुमार और साधना की जोड़ी में एक सादगी है, एक अपनापन है जो सीधे दिलों तक पहुंचता है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आपने सुना, और इस गीत ने उस दौर के एहसासों को अपने शब्दों और खूबसूरत धुन ने हम सभी के सामने एक तस्वीर सी प्रस्तुत की। आरजू फिल्म का ये पहला गाना, और आइए अब सुनते हैं एक और दिलकश नगमा जो अपने शब्दों में ही पूरी तरह उस भावना की तस्वीर खींचता है। मोहम्मद रफी की आवाज़ में ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

दोस्तों, इस गीत में कितनी खूबसूरती से प्यार का इजहार है, बिना किसी दिखावे के, बस दिल की सीधी सी बात। फिल्म में फिरोज खान का किरदार कहानी में एक अलग रंग भरता है और यहीं से रिश्तों की राह थोड़ी उलझने लगती है। दरअसल सूरज, जिसका पहले नाम गोपाल होता है, राजेंद्र कुमार की बात मैं कर रहा हूं, वो छुट्टी में कश्मीर जाते हैं और वहां पर अपने असली नाम नहीं, नकली नाम के साथ वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें हो जाता है प्यार उषा यानी साधना से, जो सूरज नाम से, सरजू नाम से उनसे मिलते हैं। और एक एक्सीडेंट में उनके साथ कुछ ऐसी ही दुर्घटना होती है कि उनके पैर खो जाते हैं, वो अपाहिज हो जाते हैं और फिर वो उषा यानी साधना से दूर होने लगते हैं ताकि वो अपने जीवन में खुश रह सके। और फिर एंट्री होती है फिरोज खान की, जिसका जिक्र मैंने किया, रमेश की, और यहाँ पर प्रेम त्रिकोण का ये उलझन की उलझन, यहाँ इस फिल्म की पटकथा को और जो दर्शक होते हैं उनके प्रति, उनके उनको अपने प्रति आकर्षित करती हुई नजर आती है। कार्यक्रम का जो अगला गीत है, उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आरजू सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं बल्कि उन एहसासों की दास्तां है जहाँ जुदाई भी है और जुदाई भी उतनी ही सच्ची लगती है जितना मिलन। और जब दर्द शब्दों में ढलकर सुरों में मिलता है तो वो गीत हमेशा के लिए याद बन जाते हैं। तो अब सुनिए एक ऐसा ही गीत जिसमें इंतजार और तड़प की गहराई साफ झलकती है और लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़।

हसरत जयपुरी के बोलों को सुंदर संगीत शंकर जयकिशन के साथ, ये मधुर आवाज लता मंगेशकर की और आरजू फिल्म, आप आरजू फिल्म के गाने सुन रहे हैं एक ही फिल्म से के अंतर्गत। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने हर भाव के लिए अलग रंग की धुनें रची, जो आज भी श्रोताओं के साथ, श्रोताओं को गीतों के साथ गुनगुनाने को बाध्य करती हैं। और जिस गीत को हम सुन रहे हैं, इसके हर एक शब्द में एक सच्चाई है, एक खामोश पुकार है, जिसे हसरत जयपुरी ने महसूस करते हुए लिखा। और इसीलिए जब कोई सुनता है तो वो भी उन भावों के पीछे वो दर्द, वो कहानी, वो एहसास महसूस कर पाता है। शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के शब्द जब सीधे दिलों के साथ जुबान तक पहुंचते हैं तो मधुर गीत बन जाते हैं। आइए एक और गीत सुनते हैं, बहुत ही प्यारा सा नगमा ये भी है, और इस गीत को फिल्माया गया है राजेंद्र कुमार और साधना पर।

श्रोताओं, आरजू का हर गीत अपने आप में एक एहसास है, कभी मुस्कान देता है तो कभी आंखें भी नम कर देता है। ये फिल्म उस दौर की याद दिलाती है जब मोहब्बत में सादगी थी, इजहार में संकोच था और इंतजार में सुकून। आज के तेज दौर में भी ये गीत हमें थोड़ी देर ठहर कर दिल की आवाज सुनने का मौका देते हैं। आरजू के इन मधुर गीतों के साथ आज का ये सुरीला सफर अब अपने समापन की ओर है और अब कहानी का वो पहलू इस गीत के माध्यम से जो इस पूरी फिल्म की पटकथा को एक नया मोड़ देता है। ये गीत अदाकारा साधना से उनके मन में चल रहे तूफानों को प्रतिबिंबित करता है और ऐसा लगता है जैसे खुद उनका दिल उनसे सवाल कर रहा है और साधना यानी उषा अपने ही सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। कव्वाली की तर्ज पर आइए सुनते हैं आशा भोसले और मुबारक बेगम के स्वर में ये गीत।

श्रोताओं, संगीत की ये जो झलक आप सुन पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरे फिल्म के जितने भी गाने थे, सभी गानों में अलग अलग तरह का संगीत, अलग अलग के भाव, मूड, और शंकर जयकिशन ने ऐसा चाहा होगा कि शायद आखिरी गाने में सभी गानों की एक झलक, सभी गानों की धुनों की झलक हम दे देंगे। तो आशा भोसले और मुबारक बेगम के स्वर में इस गीत के साथ ही और साथियों की आवाज़ों के साथ ही आज का एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम को अब संपन्न करने की मैं यानी देवेंद्र त्रिपाठी चाहूँगा अनुमति। उम्मीद करता हूँ आरजू फिल्म की कुछ छोटी मोटी बातें और ये गाने आपको पसंद जरूर आए होंगे। फिलहाल दीजिए अनुमति, लेकिन आप लगातार बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। 1:40 होने को है। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे पंजाबी में समाचार।

ओक मॉडल के आगाज के साथ पंजाब का राबता शिमाली अमरीका, बरतानिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 मकामात से कायम हो गया है। अमृतसर से रोजाना 2 इजी कनेक्ट परवाजें रवाना होंगी। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोदी नायडू ने कहा कि अमृतसर शिमाली भारत के लिए बैन अलावामी गेटवे बन जाएगा। पंजाब, जम्मू व कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत बहुत से इलाके अमृतसर के जरिए मुंसलिक होंगे। हुकूमत ने 10 और 20 रुपए की कदर के प्लास्टिक के बैंक नोट शुरू करने की भारतीय रिजर्व बैंक के तजवीज को मंजूरी दे दी है। लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में खजाने के वजीर ममलकत पंकज चौधरी ने बताया कि आरबीआई ने 10 और 20 रुपए की कदर वाले 1-1 अरब रुपए चलन में लाने के लिए हुकूमत को एक तजवीज भेजी है। झारखंड की नई दिशा नई पहल नक्सल मुखालिफ मुहिम को आज बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि कोल्हान और लातिहार खित्तों से ताल्लुक रखने वाले 16 सरगर्म माओनवाजों ने रांची में झारखंड पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी है। खुद सुपुर्दगी करने वालों में एक इलाकाई कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सतह के अरकान शामिल हैं। इनमें इलाकाई कमांडर संतोष

दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मरकज ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है ताकि वो साइबर जराइम मामलों, खासतौर से साइबर माली धोखादेही मामले में E0 FIR दर्ज कर सकें। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लिए इंतहाई तेज बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक के लिए बहुत तेज बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शिमला मशरकी भारत, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, गुजरात, मगरबी बंगाल और विदर्भ के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने उन एहतजाजी तलबा को रिहा करने की हिदायत दी है जिनकी उम्र 18 साल से कम है और उनका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई शोरगुल के दौरान शुरू होने के फौरन बाद ही मौतल कर दी गई।

0: to confirm whether there are any abnormalities at either facility. The Kyushu Railway Company said services have been suspended of all its trains, including the Kyushu Shinkansen, after the quake. The Intermeteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Chhattisgarh and Odisha for the day. An orange colour warning for very heavy rainfall has been issued for northern states including Delhi, in parts of northeast India, Bihar, Chhattisgarh, Karnataka, Konkan, Goa, Gujarat, West Bengal and Vidarbha. Heavy rainfall conditions will continue over the next 2 days. Delhi and adjoining NCR witnessed heavy rainfall today. According to the weather agency, another spell of light rain is expected at many parts of the national capital towards evening. In Himachal Pradesh, Met Center Shimla has identified the next 4 days as highly sensitive. The Meteorological Center has also issued a flash flood warning for the next 24 hours for the districts of Chamba, Kangra, Kullu, Mandi, Shimla, Sirmaur and Solan. A report.
1: The Meteorological Center Shimla has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall today in 5 districts, Chamba, Kangra, Mandi, Shimla and Sirmaur. A yellow alert for heavy rainfall has also been issued for Una, Bilaspur, Hamirpur, Solan and Kullu districts. In view of the forecast of heavy rainfall, all educational institutions in the Paunta Sahab subdivision of Sirmaur district have been ordered to remain closed today. According to the State Emergency Operations Center, 108 roads across the state remain blocked due to landslides and heavy rain. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
0: Meanwhile, in Uttarakhand, the Char Dham Yatra routes have been blocked at several locations due to landslides. Keeping the safety of pilgrims in mind, the Char Dham Yatra has been suspended till tomorrow. Continuous rainfall has caused the water level of major rivers in the state to rise. The state government is closely monitoring the situation and disaster response and rescue teams have been kept on alert in vulnerable areas. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court directs the release of student protesters below 18 years and those having no criminal record. Both Houses of Parliament adjourned soon after assembling amid ruckus. Lok Sabha scheduled to take up anti-paper leak amendment bill today. Air India launches Easy Connect hub and spoke model at Amritsar Airport, connecting Punjab with 27 global destinations. 16 Maoists, including 6 top commanders, surrender before security forces in Jharkhand. Government introduces system of registering E0 FIRs in cybercrime cases across 18 states and union territories. 7.1 magnitude earthquake hits southern Japan, tsunami warning issued. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। इससे पंजाब 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेगा। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी। और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए।

0: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी है लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: And for whatever interest. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.
0: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
2: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
0: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
3: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
0: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
4: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्स करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे सिस्टम को आप देखना चाहिए।

0: बदलना चाहिए।
1: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
2: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन IR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonir.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापो राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
3: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी हैं। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
1: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
4: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष इसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
1: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 2 महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 1 रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रूपये का इनामी रीजनल कमांडर संतोष वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश

0: जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
1: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण सियासी इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसावांसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरियाके सागर और यात्सुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशो रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशो शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत के पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं हमें। स्टूडियो की घड़ी में इस समय 2:30 और 14 सेकंड हुए हैं। समय है आपके अपने कार्यक्रम एक ही कलाकार का। हर बार की तरह हिंदी सिने जगत की किसी महान हस्ती की बात करते हैं हम अपने इस कार्यक्रम में। तो शुरू करें अपना कार्यक्रम, उससे पहले आपके लिए ये संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: स्वागत अभिनंदन आपका हमारे शो एक ही कलाकार के इस सफर में। आज हूँ आपके साथ मैं, यानी स्वीकारें मेरा मनीषा बोस का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, एक ही कलाकार की करें बात, उससे पहले क्यों ना आप ही लगाएं कयास इस तराने से। जरा पहचानिए तो कौन है हमारे आज के कलाकार।

0: जी हाँ, आज आपको लेकर चलेंगे 1940 से 1960 के दशक की ओर। तब हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम युग में एक उर्दू शायर, लेखक और गीतकार का नाम उभरा, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई अविस्मरणीय गीत दिए। नाम था संवाद लेखक और गीतकार राजा मेहंदी अली खां। शायद ही ऐसा कोई हो जिन्होंने इनके लिखे गीत को ना सुना हो। लग जा गले आपकी नजरों ने समझा और मेरे पिया गए रंगून जैसे कई अमर और सदाबहार गीत हिंदी सिनेमा में इनकी ही देन है।
1: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

राजा मेहंदी अली खान साहब का जन्म हुआ झेलम जिले में, जो पाकिस्तान का हिस्सा है। अब महज 4 साल की उम्र में ही पिता का साया उनके सर से उठ गया और माँ हेबा साहिबा, जो उर्दू शायरा थीं, उन्हीं से विरासत में मिला उन्हें लेखन का हुनर। बेहतरीन लेखन शैली और भाषा पर मजबूत पकड़ के हुनर ने उन्हें 1942 में दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो में बतौर लेखक स्थापना दी। और इसी दौरान राजा मेहंदी अली खान की मुलाकात कथाकार सआदत हसन मंटो से हुई, जो हिंदी फिल्म जगत में उस दौर में बड़ा रुतबा रखते थे। उनके ही कहने पर राजा मेहंदी अली साहब मुंबई आ गए और वहां पर अभिनेता अशोक कुमार की सहायता से उन्हें मिली फिल्म 1946 की पहली फिल्म 8 दिन, जिसके लिए उन्होंने न सिर्फ संवाद लिखे दोस्तों, बल्कि अभिनय भी किया। और उसके बाद उन्हें मिली दूसरी फिल्म 1947 की फिल्म 2 भाई, जिसके गीत लिखकर उन्होंने एक सफल गीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाई।

एक ही कलाकार में आज हमारे कलाकार हैं गीतकार राजा मेहंदी अली खां। बहुत ही कम समय में राजा मेहंदी अली खां के गीत हिंदी फिल्मी जगत को एहसास का नया मुकाम देने वाले वो गीत बने जिसे हम आज भी याद करते हैं। और संगीतकार मदन मोहन जी के साथ उनकी जोड़ी ने तो ऐसा कमाल किया कि मदन मोहन के कर्णप्रिय संगीत की जुगलबंदी वाले गीत आज भी हम सभी के एहसासों में ताजगी का एहसास कराते हैं और हमारे दिल की बगिया को महकाते हैं।

बहुत ही कम समय में और हिंदी सिने जगत में ऊंचा मकाम उन्होंने हासिल किया था, राजा मेहंदी अली खां। संगीतकार राजा मेहंदी अली खां, 1964 की वो फिल्म कौन थी के गीत लिखे और उसमें संगीत दिया उस दौर के मशहूर संगीतकार और गजलों के बेताज बादशाह मदन मोहन जी ने। फिर तो फिल्म के सभी गीत सुपरहिट होने ही थे क्योंकि उनकी जोड़ी ही इतनी कमाल की थी। विशेषकर लग जा गले जी वो गीत था जिसे कई रियलिटी शो में गाया गया था और इसे बहुत पसंद किया गया था। उसी तरह इसे फिल्म का एक और गीत था नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। चलिए सुनते हैं वो गीत।

सचिन देव बर्मन, ओपी नैयर और इकबाल कुरैशी सभी के साथ राजा मेहंदी अली खां के सभी गीत बड़े मकबूल हुए दोस्तों। और ये जो गीत आप सुन रहे थे, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, ये गीत बरसात के इस रिमझिम फुहारों में हमें प्रकृति के नज़ारों की याद करा जाते हैं, है ना। और ये जो गीत है वो प्रकृति की मुस्कान के साथ हमें वहीं ले जाता है जहाँ इस गीत का फिल्मांकन हुआ था। जी हाँ, शिमला में ही पिक्चराइज किया गया था ये गीत। और उनकी एक फिल्म आई थी शहीद, और उसमें भी ये गीत था, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो, जो उस दौर में बहुत लोकप्रिय हुआ था। सन 1951 में मदहोश, मेरा साया, अनपढ़, वो कौन थी, सभी फिल्मों में राजा मेहंदी अली खां साहब के बोल थे और मदन मोहन साहब का संगीत था। इस जोड़ी ने ऐसा कमाल किया कि उनके गीत इतने मशहूर हुए कि वो आज भी हमारे दिलों में गूंजते हैं।

अभी आप सुन रहे थे आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार। और साथियों, इस समय स्टूडियो की घड़ी में 2:59 हो चुके हैं और अब समय है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज का।

मैटनी मेलोडी का ये सफर आज है आपका मनीषा के साथ, तो आपका स्वागत करती हूँ इस गीत के अंदाज के साथ। और दोस्तों आज हम बात करेंगे 60 के दशक में, 60 के दशक में बनने वाली उन हिंदी सिनेमा के गीतों के बारे में जो हिंदी सिने जगत का स्वर्ण युग माना गया था, जिसमें मेलोडी के साथ थी सादगी और शब्दों की गहराई का वो संगम जो आज भी हमारे दिलों को छूता है। इस दौर के अमर गीतों में वो सदाबहार नगमे शामिल हैं, वो गीत शामिल हैं जिनकी धुनें सुनते ही हमारा दिल तरोताज़ा हो जाता है।

मैडनी मेलोडीज़ में हम सुन रहे हैं 1960 के दशक के वो सदाबहार गीत जिन्हें सुनकर हमारा दिल आज भी गुनगुनाने लगता है उन गीतों को। तो आप इस सफ़र में हैं मेरे यानी मनीषा के साथ, करेंगे आगे भी बात, लेकिन फ़िलहाल सुनते हैं ये संदेश।

0: 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों, 1960 का वो दौर था जब मुगले आजम और संगम और गाइड जैसी महान फिल्में उस दौर में बनी थीं, जिसमें सेंसरशिप में ढील, ब्लैक एंड व्हाइट से निकलकर रंगीन सिनेमा के युग का विस्तार बढ़ा और यथार्थवादी कहानियों का उदय हुआ, जो वास्तविक धरातल की सच्चाई को फिल्मों में सफलतापूर्वक उतारने की कला थी वो इस जमाने में, इस दशक में साफ दिखाई देने लगी। तो आइए सुनते हैं इस दौर का एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, जिसे सुनकर आप जरूर खुश होंगे।

0: अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: मैटनी मेलोडीज में हम बात कर रहे हैं 60 के दशक में बने हुए गीतों की। साथियों, 60 के दशक में संगीतकार और गीतकार मिलकर कहानी उस कहानी के हिसाब से लिखते धुने बनाते थे जो वो फिल्म की कहानी होती थी। इस तरह गीत, सुर, साज और आवाज का संगम ही उस दौर के गीतों को अमर बना देता था। लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की जादुई आवाज़ गीतों को इस तरह अपनी आवाज़ में ढालती थी कि वो गीत खुद ब खुद मुस्कुराने लगते थे।

साथियों, 60 के दशक की खासियत में शास्त्रीय संगीत की धुनों का प्रयोग भी था। कई गीतों में ये प्रयोग किया गया और उन गीतों का अर्थ और मर्म उनके प्रयोग से इतना गहरा हो गया कि सारी कहानी गीतों में ही बयां हो जाती थी। उस दौर में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की जादुई आवाज़ें संगीतकारों का शास्त्रीय रागों में जैसे राग भैरवी, शिव रंजनी का प्रयोग लोक धुनों का सुंदर समागम हुआ करती थी और उन्हें आज भी सदाबहार गीतों के रूप में हमें सुनाई देती है।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: एक बार फिर से आपका स्वागत है मैटनी मेलोडीज में और आज बात हो रही है 60 के दशक में बनने वाली

फिल्मी गीत संगीत की। वो जमाना शैलेंद्र, साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी और मजरूह सुल्तानपुरी जैसे दिग्गज गीतकारों ने अपनी लेखनी से उस दौर में कई बेहतरीन रचनाएं लिखीं और बोल लिखे। विविध वाद्य यंत्रों को सुर सरिता का साज बनाया गया, यहां तक कि सितार, बांसुरी और वायलिन के साथ साथ विदेशी वाद्य यंत्रों का भी बेहतरीन प्रयोग उस दौर में हुआ। चलिए सुनते हैं उस दौर का एक और खूबसूरत सा नगमा।

दर्द, गम और देशभक्ति की भावना, सब कुछ अपने भीतर समेटे हुए वो दौर हमें आज भी अपने गीतों से खुश कर जाता है। तो चलिए, मैटनी मेलोडीज के इस सफर में हम सुनते हैं ये अंतिम गीत आज की

मैटनी मेलोडीज के सफर में आप मनीषा के साथ सुन रहे थे ये कार्यक्रम, और इस समय स्टूडियो की घड़ी में 3:29:55 हैं। लीजिए पेश है उर्दू मजलिस।

印度的里广播电台，听众朋友们，请收听 Bihar 邦的 Bhojpuri 民间歌曲。

0: में इस समय भारतीय दल अपनी चुनौती पेश कर रहा है, लगातार भारतीय खिलाड़ी पदक जीत रहे हैं, तो कुल मिलाकर किस तरह से कॉमनवेल्थ गेम्स इस समय चल रहे हैं, इस पर आइए आपको सुनाते हैं हमारे युवा साथी आकाश की खास रिपोर्ट।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो कि ग्लासगो में चल रहा है उसको शुरू हुए 5 दिन हो चुके हैं और सबसे पहले बात 5वें दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि की। भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनकड़ ने महिला शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक जीतते हुए इतिहास रच दिया। ये कॉमनवेल्थ गेम्स के पैरा एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। वहीं एथलेटिक्स में सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में 2.25 मीटर की छलांग लगाकर पदक अपने नाम किया। वेटलिफ्टिंग में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। ज्ञानेश्वरी यादव ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग और विल्लूरी अजय बाबू ने पुरुष 79 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके अलावा शिल्पा के शयाला ने शॉटपुट और विद्या रानी देवी ने महिला 58 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर भारत की झोली में 2 और पदक जोड़ दिए। अब बात आज यानी 6वें दिन की। तैराकी में साजन प्रकाश और श्री हरि नटराज अपनी अपनी स्पर्धाओं में उतरेंगे। एथलेटिक्स में राजेश रमेश, विशाल टीके, पूजा और गुलवीर सिंह पर सभी की निगाहें रहेंगी। वेटलिफ्टिंग में निरुपमा देवी सेराम और हरजिंदर कौर पदक के लिए चुनौती पेश करेंगी। मुक्केबाजी में प्रीति, प्रिया, परवीन, जादूमणि सिंह और कपिल पोखरिया अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। इसके अलावा लॉन बॉल्स, पैरा स्विमिंग और 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल में भी भारतीय खिलाड़ी एक्शन में दिखाई देंगे। कल यानी 7वें दिन लॉन बॉल्स, वेटलिफ्टिंग और एथलेटिक्स में भारत की पदक जीतने की उम्मीदें कायम रहेंगी। संजना, दिलबाग सिंह, सेराम, निरुपमा देवी, पारुल चौधरी सहित कई खिलाड़ी पदक जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया पहले, इंग्लैंड दूसरे और कनाडा तीसरे स्थान पर है। भारत अब तक 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य यानी कुल 10 पदकों के साथ 8वें स्थान पर बना हुआ है। कॉमनवेल्थ खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय तोमर ने बात की जाने माने खेल विशेषज्ञ और प्रसार भारती संवाददाता संजीव दत्ता से। उन्होंने क्या कहा आइए सुनते हैं।
2: और इस बार की अगर हम बात करें तो अब तक आज तक भारत ने जो स्वर्ण पदकों की बात है तो वो 2 स्वर्ण और 5 रजत और 3 कांस्य पदक अपने नाम अब तक कर लिए हैं। 8वें स्थान पर है, 10 पदक भारत अब तक अपने नाम कर चुका है, तो एक बहुत उज्जवल भविष्य है। हालांकि इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में केवल 10 ही खेलों को सम्मिलित किया गया है। जिन खेलों में हमारी सबसे ज्यादा चुनौती थी, चाहे वो शूटिंग हो,

0: कर रहे थे। अब जैसे आगे बॉक्सिंग के मुकाबले हैं, वेटलिफ्टिंग के भी कुछ मुकाबले चल रहे हैं, तो क्या लगता है सर, कुछ और पदकों की संख्या बढ़ सकती है?
1: बिल्कुल, भारत ने अब जैसे मुक्केबाजी के अभी रिजल्ट तो अभी पूरे आए नहीं है, क्योंकि राउंड ऑफ 16 के मुकाबले हुए हैं और राउंड ऑफ 8 के मुकाबले आपके होने बाकी हैं, तो राउंड ऑफ 8 के बाद ही हमारे पदकों की संख्या होगी। मगर लवलीना की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सेमीफाइनल में उनको प्रवेश मिला है, क्योंकि उनके मुकाबले में उनको वेट कैटेगरी में बाई मिली, तो बाई से वो डायरेक्ट सेमीफाइनल में गई हैं। तो इससे एक उन्होंने पदक तो अपना सुनिश्चित, कांस्य पदक तो अब तक हम सुनिश्चित कर चुके हैं, मगर कांस्य से और आगे जाएंगे, तो उनका जब मुकाबला होगा तो सुनिश्चित है कि वो बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करेंगे। सचिन की अगर हम बाउंस पर की बात करें तो स्कॉटलैंड को उन्होंने पास किया, 4-1 का डिसीजन रहा, और अपना जादूमणि ने जो अपना 5-0 से अपने मुकाबले को जीता, तो वो ये दर्शाता है कि मुक्केबाजी में हमें 14 मुक्केबाज जो हमारे गए हैं, 14 में से हमें, मैं जो मेरा व्यक्तिगत मूल्यांकन है कि हम कम से कम 10 मेडल तो श्योर इसमें लेंगे ही लेंगे।
0: बड़ी अच्छी बात आपने बताई। और संजीव जी, आप तो मुक्केबाजी से जुड़े रहे हैं और हमेशा से मुक्केबाजी का बहुत गहन विश्लेषण आपने किया है, तो जब भी हम मुक्केबाजी की बात करते हैं तो पिछले कुछ समय से, खास तौर से पिछले कुछ सालों से, मुक्केबाजी एक ऐसा खेल बन के उभरी है जिसमें भारत का पदक एकदम पक्का माना जाता है। भारतीय मुक्केबाज आज एक पदक की सबसे बड़ी उम्मीद माने जाते हैं। तो इस बार जो हमारी टीम गई है, आपको लगता है सर इसमें कुछ और ऐसे मुक्केबाज हो सकते थे जो निश्चित तौर पर गोल्ड मेडल जीत पाते?
1: देखिए, ये जो प्रक्रिया है, जो चयन प्रक्रिया चली थी लगातार पूरे साल, पहले तो होता था कि कंपटीशन से पहले आपका चयन होता था, मगर इस बार जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी नई प्रणाली चलाई है, वो पूरे साल जो प्रतियोगिताएं जितनी भी चलती हैं उन प्रतियोगिताओं में पॉइंट सिस्टम उन्होंने किया हर एक बॉक्सर के लिए, तो पॉइंट सिस्टम से वो अपने आप को आकलन करते हैं, तो खिलाड़ी का चयन होता है और उसके बाद एक चयन प्रक्रिया तो रहती है, तो वो पूरे साल की परफॉर्मेंस के आधार पर जो इस बार की टीम, मैं कहता हूं मुक्केबाजी की आप बात कर रहे हैं, तो मुक्केबाजी की जो टीम इस बार गई है तो वो ही अपने आप में सबसे बेस्ट टीम है, बिल्कुल निचोड़ जिसे कहते हैं ना, कि वो टीम वहां पर पहुंची है। अगर पुराने बॉक्सर्स की बात करें जैसे डिंगू सिंह, अखिल कुमार, विजेंदर सिंह, सुजन सिंह, मनोज कुमार, अमित पंघेल, गौरव सोलंकी, विकास कृष्णा, नीतू ढांडर, ये ऐसे मुक्केबाज हैं जिन्होंने हमेशा भारत को स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं, और आने वाले समय में भी भारत का बहुत अच्छा उज्जवल भविष्य है, चाहे वो वेटलिफ्टिंग ही क्यों ना हो। वेटलिफ्टिंग में आप देखिए, मीराबाई चानू ने अपनी तीसरी हैट्रिक की है, तीसरा स्वर्ण पदक लिया है, हालांकि एक रजत पदक भी है बर्मिंघम में, सबसे पहले उन्होंने रजत पदक से ही शुरुआत की थी और उसके बाद लगातार 3 संकटों में उन्होंने स्वर्णिम सफलताएं दिलाई। तो मैं कह सकता हूं कि चाहे वो वेटलिफ्टिंग हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो रेसलिंग हो, तो ये गेमें ऐसी हैं, हालांकि इस बार रेसलिंग नहीं है, पर ये गेमें ऐसी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक गौरवशाली इसका इतिहास रहा है।
0: कहीं ना कहीं संजीव जी, इस बार वेटलिफ्टिंग में हम स्वर्ण पदक थोड़े कम ले पाए हैं, थोड़ा सा चूक हुई है, क्योंकि ब्रॉन्ज और सिल्वर हमारे अधिक आए हैं, स्वर्ण पदक तक हम थोड़ा कम पहुंच पा रहे हैं।
1: देखिए, कल की अगर हम बात करें बिंदिया रानी की, आप उसका लिफ्ट देखें कितना अच्छा उसने लिफ्ट किया, गेम रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, मगर नाइजीरिया के लिफ्टर उनसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करके उसने भी उनका गेम रिकॉर्ड उसी समय तोड़ा, तो ऐसा नहीं है, कल अजय बाबू ने अपना गेम रिकॉर्ड बनाया स्नैच का, तो ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपनी क्षमताएं दक्षताएं प्रस्तुत कर रहे हैं, लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से आप अपनी क्षमताएं दक्षताएं प्रस्तुत कर रहे हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी खिलाड़ी का आकलन कम कर सकते, दूसरे भी राष्ट्रमंडल जो हैं, राष्ट्र हैं, वो भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आते हैं, तो पूरा साल हमारा जो एक ट्रेनिंग शेड्यूल चला, चाहे वो वेटलिफ्टिंग का हो तो या बॉक्सिंग का हो, किसी भी गेम का हो, तो वो अपने आप में पूरी तरह से परिपक्व और पूर्ण तैयारी के साथ उतरा है, तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो रहती है। आप देखिए कि जहां मीराबाई चानू ने 101 का पहले गेम रिकॉर्ड करना चाह रही थी, पर एकदम 105 पे फिर उन्होंने गेम रिकॉर्ड किया और अपनी तीसरा प्रयास तो उन्होंने पूर्ण ही नहीं किया, मतलब उसके लिए वो तीसरे अटेम्प्ट के लिए आई नहीं, दूसरे अटेम्प्ट तक ही उन्होंने अपने आप को सीमित रखा, क्योंकि अब ये भी है कि वो अब आगे हो सकता है शायद आने वाली प्रतियोगिता एशियन गेम्स है, एशियन गेम्स की भी अपने दिमाग में लेकर चल रही है, तो ये उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है।
0: संजीव जी, आपने तो खेलों को बहुत नजदीक से देखा है और बहुत सारे जो राष्ट्रीय स्तर के खेल होते हैं उनको भी आप बहुत नजदीक से उनका गहन अध्ययन करते हैं, तो अब अगर हम बात करें इस कॉमनवेल्थ गेम्स में जो भारतीय खिलाड़ी गए हुए हैं उनसे जो पदक की उम्मीद है, तो अगर हम भारतीय टीम की पूरी बात करें तो पहले तीन स्थान पर क्या भारतीय

0: हो सकती है?
1: पहले तीन स्थान पर आपने बहुत ऐसा प्रश्न पूछा है। पहले तीन स्थान की तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारा प्रदर्शन जो है अन्य खेलों में इतना अच्छा नहीं रहा। लॉन बॉल हमारा बहुत अच्छा बॉल हम बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, महिला टीम ने जहां बर्मिंघम में स्वर्णिम सफलता दिलाई थी, मगर इस बार हमारी कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रही है। अन्य राष्ट्र भी बहुत अच्छे उस पर चल रहे हैं, तो ओवरऑल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल में तो हम पहले तीन पायदान पर तो नहीं दिखेंगे, मगर हाँ हम अपना प्रदर्शन पहले से बहुत बेस्ट करेंगे ये मैं कह सकता हूँ। हालांकि ये बहुत अभी जल्दबाजी होगी कि हम ये कहें कि ओवरऑल हम कितने अच्छे मेडल ले पाएंगे, मगर हमारा प्रदर्शन पहले से बेहतर रहेगा। इतने कम खेल होने के बावजूद हमारा प्रदर्शन थोड़ा सा यहाँ पर इस वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि हम हमारे यहाँ पर जिन खेलों में हमारा सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व रहता था वो खेल इसमें सम्मिलित नहीं है इस बार, तो इसलिए हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, नीचे पायदान पे। इस समय आज की डेट में आप देखें आज हम 8वें स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया 26 स्वर्ण 13 रजत और 20 कांस्य पदक लेकर पहली पायदान पर है। इंग्लैंड 9 स्वर्ण 14 रजत और 11 कांस्य पदक लेकर 34 पदक है उसके पास, और कनाडा 7 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस्य पदक लेकर तीसरे स्थान पर है। स्कॉटलैंड, अब आप एक चीज और देखिए, इंग्लैंड स्कॉटलैंड ये जो ऐसी कंट्रीज हैं ये बहुत बढ़ चढ़कर इन पावर गेम्स में बहुत अपना अच्छा प्रदर्शन दे पा रही हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ हमारी एक त्रुटि यही रही कि हमारी जो जिन गेमों में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन गेमों के सम्मिलित ना होने की वजह से हम पायदान में थोड़ा नीचे हैं।
2: The Commonwealth Games.
0: कॉमनवेल्थ खेलों पर ये थी खास रिपोर्ट आकाश की, और जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी और संवाददाता, प्रसार भारती संवाददाता संजीव दत्ता ने भी बताया कि कई खेल ऐसे हैं जिसमें हम अच्छा खेलते हैं, खास तौर से रेसलिंग है, शूटिंग है, जो कॉमनवेल्थ खेलों में इस बार नहीं है। तो वो भी एक हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारी पदक तालिका इस बार थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक निराशा एथलेटिक्स एथलेटिक्स में, तो कॉमनवेल्थ में वैसे भी हम बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि एथलेटिक्स में कॉमनवेल्थ का जो स्तर है, कॉमनवेल्थ खेलों का स्तर बहुत हाई होता है। और दूसरी तरफ जो हमारी वेटलिफ्टिंग है, जहां वेटलिफ्टिंग से हम काफ़ी सारे स्वर्ण पदक जीत सकते थे, लेकिन वहां पर भी अब हम रजत और ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष हमारे खिलाड़ियों को करना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर हम वेटलिफ्टिंग के स्तर की बात करें तो कई कैटेगरीज ऐसी होती हैं जहां पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप से भी, जो भारतीय राष्ट्रीय सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप होती है, उससे भी कम वजन उठाने पर वहां पदक मिल जाता था। लेकिन इस बार स्थिति बदल गई है, सभी देशों के खिलाड़ी बहुत अच्छी तरह से तैयारी करके आए हैं, लेकिन अब भारतीय वेटलिफ्टिंग फेडरेशन को ये समझना पड़ेगा कि कॉमनवेल्थ में ऐसे ही पदक नहीं आएगा, अब हमारे खिलाड़ियों को थोड़ा और जोर लगाना पड़ेगा। और एथलेटिक्स में तो बहुत ही कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीत पाए हैं, लेकिन हमें हमारे खिलाड़ियों से ये अपेक्षा अवश्य करनी चाहिए कि वो अपना बेस्ट यहाँ पर दें। खैर, कॉमनवेल्थ खेलों मैं तो बहुत सारी गतिविधियां चली रही हैं, लेकिन एक गतिविधि जो है वो दिल्ली में भी हो रही है, और वो हो रही है कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप। क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार टेबल टेनिस को सम्मिलित नहीं किया था, इसीलिए उन खिलाड़ियों को मौका देने के लिए दिल्ली में टेबल टेनिस, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, और ये दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खेली जा रही है। किस तरह से ये चैंपियनशिप चल रही है, क्या क्या इस चैंपियनशिप में हो रहा है, इस पर एक खास रिपोर्ट बनाई है हमारे सहयोगी आकाश ने, आइए सुनते हैं।
3: नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का शानदार आगाज हो चुका है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ये प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 7 वर्षों के अंतराल के बाद आयोजित की जा रही है। इस बार टूर्नामेंट का शुभंकर मयूर रखा गया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 के कार्यक्रम में टेबल टेनिस शामिल नहीं होने के कारण इस चैंपियनशिप का महत्व और भी बढ़ गया है। प्रतियोगिता में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, कनाडा और नाइजीरिया सहित 25 से अधिक देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मेजबान भारत ने टूर्नामेंट की शुरुआत शानदार अंदाज में की है। शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय महिला टीम ने ग्रुप बी के अपने पहले मुकाबले में मालदीव को 3-0 से हराकर विजयी अभियान की शुरुआत की। युवा खिलाड़ी यशस्वी घोरपरे ने एसत रफा नजीम को सीधे सेटों में हराकर भारत की जीत सुनिश्चित की। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने भी अपने पहले मुकाबले में दमदार प्रदर्शन करते हुए प्रतिद्वंदी टीम को 3-0 से मात देकर जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया। भारतीय खिलाड़ियों ने शुरुआती मुकाबले में शानदार तालमेल और आत्मविश्वास का प्रदर्शन करते हुए खिताब की दावेदारी मजबूत

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

बता दें क्यों दिल में सुलगते रहे, लोगों को बता दें हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा

छूट जाए सब दुनिया चाहे छूट जाए घर बारी, रूठ जाए सब दुनिया चाहे छूट जाए